सुप्रभात। एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 20 तारीख, तदनुसार 10 मई वर्ष 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। कुछ ही क्षणों में प्रातः के 6 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन

महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकाय

0: ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। उड़ीसा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज का चिंतन वंदनवार। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

Chintan. किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए सोने की बेड़ियां लोहे की बेड़ियों से कम कठोर नहीं होंगी। चुभन धातु में नहीं वरन बेड़ियों में होती है। ये कथन महात्मा गांधी का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है झरोखा के अंतर्गत आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले विविध भारती मुंबई से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत प्रातः 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का पाठ, 6:45 पर संगीत सरिता और 7 भूले बिसरे गीत। हम ही राही प्यार के युगल गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 8 समाचार प्रभात, सुबह 10 का समय रहेगा हिंदी समाचार का और 12 हिंदी समाचार फिर से प्रसारित किए जाएंगे। समाचारों के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे 1:05 पर हिंदी में और 1:10 पर पंजाबी में। सायंकालीन प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:10 पर हिंदी में आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से और 6:20 पर पंजाबी समाचार विविध भारती के जालंधर केंद्र से रिले किए जाएंगे। दोपहर समाचारों में 2:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे और रात्रि हिंदी समाचार सुनिएगा 8:45 पर और रात 11:00। विविध भारती मुंबई से त्रिवेणी सुनिएगा प्रातः 8:15 पर और चित्रलोक का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 8:30 और रात्रि 8:15। हमारे केंद्र से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय समाचार आप सुनेंगे कार्यक्रम आज का अखबार के अंतर्गत, समय रहेगा 9:30। हमारे केंद्र से लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ प्रसारित किया जाएगा 10:05 पर और आज का विषय है ना पहुंचने से देर भली। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला

का कारवां के अंतर्गत पद्मश्री मेघचंद और रॉक गार्डन की दास्तां जिंदगी नामा सुनिएगा प्रातः 11 बजे। यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा विविध भारती चंडीगढ़ से। साढ़े 11 बजे सुनेगा कार्यक्रम हेलो सिटी ब्यूटीफुल, सुनेगा अपनी पसंद के गीत। विविध भारती मुंबई से 12:05 पर सुनेगा कार्यक्रम यादों की महफिल। दोपहर 1:30 पर सुरीला सफर, 2 बजे त्रिवेणी और 2:30 पर गोल्डन हिट्स सदाबहार नगमे। मनचाहे गीत ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 3 बजे, 3:30 पर नाट्य तरंग और शाम 4 बजे सुनेगा उजाले उनकी यादों के। शाम 6:30 पर सुनेगा शब्द कीर्तन का कार्यक्रम अमृतवाणी जयमाला, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7 बजे। रात 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम आज के फनकार और ये कार्यक्रम आज केंद्रित है पंकज मलिक पर। कुछ पंजाबी गीत आपको सुनवाएंगे शाम 7:47 पर और कार्यक्रम सो सांझ के अंतर्गत रात 10:32 पर। विविध भारती मुंबई से रात 9 बजे सुनेगा कार्यक्रम आपके लिए और रात 10 बजे सुनेगा छाया गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई से श्री रामचरित मानस।
1: और अब श्री रामचरित मानस गान का भाग 184 प्रस्तुत है।

पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकई की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाएं। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थीं। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते, दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते। दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायुवेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगे।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कल्पना जी, आज की इस कड़ी में हमें बताइए सबसे पहले कि बंदिशें तैयार करने में विषयों का चुनाव किस तरह से किया जाता है और ज्यादातर किन भाषाओं में बंदिशें तैयार की जाती हैं?
2: जी, भाषा तो अक्सर हिंदी, अवधी, ब्रिज बोली में अधिकतर पाई जाती है। कुछ कुछ राजस्थानी, बिहारी और मराठी भाषा में भी कई बंदिशें बनाई, पंजाबी में बहुत सारी बंदिशें बनाई गई है। उस स्थान का भी असर होता है बोली पर
1: जी।
2: तो भाषा बोली भी अलग अलग थोड़ी हर एक कलाकार के आसपास के वातावरण के हिसाब से बदल जाती है। और उसके साथ साथ विषय जो है वो भक्ति, श्रृंगार, प्रकृति से संबंधित वर्णन, ऋतुओं का वर्णन, उत्सवों का वर्णन और गायन वादन में जो महत्वपूर्ण मूल्य हैं उनके बारे में भी कई बंदिशें बनी हुई हैं
1: जी।
2: तो ऐसे हर कलाकार के बंदिश बनाते समय जो आगरा जयपुर घराने की गायकी आपके गायन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आपने भी कई रचनाओं का निर्माण किया हुआ है
1: जी।
2: तो आज कुमुदिनी जी ने बनाई हुई राग बिलास खानी तोड़ी में मैं एक बंदिश आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तीन ताल में बंधी हुई ये बंदिश है
1: जी।
2: कैसे समझाऊं।

0: बिलास खानी तोड़ी, इस नाम से ही हमें प्रतीत होता है कि ये राग तोड़ी का ही प्रकार होगा। इसका थाट जो है भैरवी थाट है, क्योंकि इसमें अधिकतर स्वर भैरवी के ही लगते हैं। इसके आरोह में मध्यम और अवरोह में पंचम वर्जित है, इसलिए इसकी जाति शाड़व शाड़व है। तोड़ी अंग को ध्यान में रखकर मेंड के प्रयोग से ही यह राग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और शुद्ध मध्यम के प्रयोग से भूपाल तोड़ी से भिन्न हो जाता है। और धैवत प्रमुख स्वर या वादी स्वर हम कह सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर राग है, प्रातःकालीन राग है। इसका चलन मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ
1: जी।
0: इसके आरोह में मणि वर्ज है और अवरोह में पंचम वर्जित है। इसका चलन वक्र रूप से जाता है, जो मैं अब आपको बताती हूँ।

0: जी अरवा, बड़ी सुंदर रचना थी और बड़े सुंदर अंदाज में आपने प्रस्तुत किया, यूं कहें कि मोहित कर लिया अपने गायन से। अब बताइए हमारे श्रोताओं के लिए अब क्या प्रस्तुत करेंगे आप?
1: अब कुमुदिनी जी की आवाज में उन्हीं की बनाई बंदिश राग भैरव में प्रस्तुत करते हैं। ताल तीन ताल एवं शब्द है शंभो गिरिजापति।

अब आपके सामने राग भीम पलासी में एक बंदिश हमारे भाग आज जागे कुमुदिनी जी की आवाज में प्रस्तुत है।

अब आपके सामने एक चतुरंग जो हमीर राग में निबद्ध है, कुमुदिनी जी ने ही गाया हुआ, गावो चतुरंग।

0: महिला रचनाकारों की बंदिशें। आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। गायन सहभाग रहा अनुजा जोकरकर का। तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंगल और किरण बंग। संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत स्वीकार कीजिए। नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं डॉक्टर फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है पंकज मलिक ने, संगीत से सजाया है पंकज मलिक ने और गीत के बोल लिखे हैं आरजू लखनवी, एएच शोर ने।

0: आज महान गायक और संगीत निर्देशक पंकज मलिक की जयंती पर उनके कुछ सदाबहार गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आज उनकी मधुर धुनों को याद करते हुए जिन्होंने भारतीय संगीत को एक नई पहचान दी, तो आइए सुनते हैं ये अगला गीत कपाल कुंडला से, आवाज और संगीत पंकज मलिक का।
1: Yeah, man.

0: एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं मंजिल फिल्म का ये गीत, आवाज पंकज मलिक की, और इस गीत को संगीतबद्ध किया है RC बारोल ने।

0: आरसी बोराल का संगीतबद्ध किया ये गीत अभी आपने सुना और अब भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक वक्त वक्त है एक अंतराल का।
1: इमारत कोठी झोपड़ी छोटी

आप सुन रहे हैं वो भूले बिसरे गाने जिन्हें आप कम ही सुन पाते हैं। ये गीत आपके लिए विविध भारती द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। तो चलिए इसी तारतम्य में सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है स्टार। इस गीत को गाया है पंकज मलिक ने और संगीत है सुरेश चौधरी का।

और लीजिए अब सुनिए पंकज मलिक और साथियों का गाया ये गीत, जिसे लिखा है पंडित भूषण ने। इस गीत को संगीत से सजाया है पंकज मलिक ने। फिल्म का नाम यात्रिक।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुरैया की आवाज में प्यार की जीत इस फिल्म का गीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना, हुस्नलाल भगतराम का संगीत।

0: और इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्म।

चाचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सामू और उज्जवल बनाए। वीको टर्मर क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं युगल गीत। लीजिए आगाज करते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की गाय इस गीत के साथ, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत शिवहरी का, फिल्म का नाम सिलसिला।

आइए अब आपको सुनवाते हैं घुंघरू फिल्म का गीत मनहर उदास और साधना सरगम की आवाजों में। अनजान के बोल है और धुन है कल्याण जी आनंद जी की।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं लम्हे फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और ए हरिहरन की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, धुन बनाई शिवहरी ने।

0: का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
0: मेरे पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हम है रही प्यार के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अवतार फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी तर्ज बनाई है।

0: इस गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत।
1: विविध भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम है राही प्यार के। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। कुछ ही पलों में सुबह के 8 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए

0: मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़

0: देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
2: टीवीके के जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
3: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेक एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
7: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी

0: दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
2: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त, अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती

0: आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, मां होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं विविध भारती मुंबई से अगला कार्यक्रम त्रिवेणी।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

मित्रों, किसी भी बच्चे का संसार से पहला परिचय होता है उसकी माँ, जिसकी ममता एक बच्चे के जीवन की सबसे बड़ी धरोहर होती है। माँ और उसके बच्चे का नाता सिर्फ जन्म का ही नहीं, सांसों का नाता होता है। एक बच्चा अपनी पहली सांस माँ की कोख में ही लेता है और तभी से उसके जीवन की डोर ममतामयी माँ से बंध जाती है। जाने कितने दर्द सहती है वो माँ जिसकी कोख में पलने वाला बच्चा जैसे ही दुनिया में आता है उसे देखते ही अपने सारे दर्द भूल जाती है माँ, और चमकती आंखों से प्यार छलकाती, मुस्कुराती अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा लेती है। छलक पड़ते हैं खुशी के आंसू उस माँ की आंखों से जो स्वयं ममता का अथाह सागर है। उसकी कोख से जन्मा बच्चा उसकी जिंदगी को खुशियों और उल्लास से भर देता है।

ममता का अमृत रस बरसाता माँ का आंचल संपूर्ण जगत को स्वयं में समेटने की ताकत रखता है और माँ के आंचल की छत्र छाया में जीवन बिताने की कामना हर कोई करता है। बच्चे की खुशियां, जरूरतें, उसकी आशाओं और अरमानों को पूरा करने में अपना सारा जीवन बिता देती है माँ। बच्चे की गलतियां हों या भटकाव, बहुत प्यार से उसे वो राह दिखाती है जो बच्चे के जीवन में बेशकीमती और सुखदाई होती है। माँ अनमोल है, अतुलनीय है, जिसका हर एक बच्चा उसकी आंखों का वो तारा होता है, जिसकी एक मुस्कुराहट से उसकी सुबह होती है, जिसके लिए वो अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती है। बच्चे के मुंह से निकला पहला शब्द होता है माँ, जिसे सुनकर दुनिया की हर मां निहाल हो जाती है और अपने आंचल में समेट लेती है अपने जिगर के टुकड़े को।

माँ की ममता निस्वार्थ है, बच्चे के लिए सुख की वो छाया है माँ, जिसके तले बच्चा स्वयं को सदैव सुरक्षित महसूस करता है। हर बच्चे को माँ की ममता का वो आंचल नसीब हो जिसकी छत्र छाया में उसका मासूम बचपन खिलखिला।

उठे और संगीत के सुरों की तरह रस बरसाता आगे और आगे बढ़ता ही जाए। ना उम्मीदी में भी उम्मीद का दिया जलाने वाली माँ और उसकी ममता के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। ममत्व का गहरा समंदर है माँ का आंचल, जिसका आशीर्वाद जटिल से जटिल समस्याओं को भी सुलझाने की ताकत रखता है। माँ अतुलनीय है, पूजनीय है। इस धरती पर ईश्वर का रूप है माँ।

जगत में हर बच्चे के साथ उसकी माँ का आंचल हो, ममता हो, दुलार हो, इन्हीं कामनाओं के साथ अब संपन्न होती है आज की त्रिवेणी।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया बेरंगू, पिया है वहां से टेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।

0: चाहे वो मन लुभावनी बातें।
1: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
2: विविध भारती पर हर पल है खास।
0: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
3: आज के फनकार।
2: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
3: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
0: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

ये है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती। हमारा अगला कार्यक्रम चित्रलोक होगा बस थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार हम आपके लिए लाएंगे पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगीनामा में विश्व को रॉक गार्डन जैसी अविश्वसनीय धरोहर प्रदान करने वाले महान कलाकार नेकचंद और रॉक गार्डन की अनोखी कहानी उन्हीं की जुबानी आज दिन में 11 बजे।
1: मैंने सोच समझ के कुछ नहीं बनाया जी, ऐसे ही अपनी आदत के मुताबिक कि खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ काम करना है, देखते रहना है। ऐसे जैसे पत्थर में लाने शुरू किए पहाड़ों से, पहाड़ों पे गया, पत्थर मैंने देखे, उनकी कलेक्शन की, वो ऐसे लगते थे जैसे उनमें लाइफ है।
0: तो FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

एक मैं और एक तू इस फिल्म का गीत सुनिए अमित त्रिवेदी, शिल्पा राव, निखिल डिसूजा और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत अमित त्रिवेदी का।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सोना मोहापात्रा रविंद्र उपाध्याय की आवाजों में तलाश फिल्म का गीत। जावेद अख्तर ने इसकी शब्द रचना की है, राम संपत ने इसकी लय बनाई है।

एनीबडी कैन डांस यानी कि एबीसीडी इस फिल्म का गीत सुनिए। मोहित चौहान प्रिया पंचाल के का गाया ये गीत, साथ दिया है तन्वी शाह और डेनी स्क्वरीज ने, और इस गीत को लिखा है मयूरपुरी ने, सागर जिगर का संगीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आप सुन रहे हैं आज नए गीत। माँ, एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी दुनिया का सुकून छिपा होता है। वो खुद थक जाती है लेकिन हमारी थकान पहचान लेती है। हमारी छोटी सी खुशी के लिए अपने बड़े बड़े सपने चुपचाप समेट लेती है। मदर्स डे या मातृ दिवस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम को धन्यवाद कहने का अवसर है जो बिना किसी शर्त के हर पल हमारे साथ खड़ा रहता है। तो आज थोड़ा वक्त अपनी माँ के नाम कीजिए, उनसे कहिए आप है तभी मेरी दुनिया खूबसूरत है। सभी माताओं को मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं यारिया फिल्म का ये गीत। अनुपम अमोद की आवाज, इरशाद कामिल की रचना, धुन बनाई है अनुपम अमोद ने।

0: फुकरे फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सोना महापात्रा की आवाज में। इस गीत को राम संपत ने सुरों में ढाला है।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी
3: वो मेरे पूरे करियर का फंडिंग दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चयन से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मेरे पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गीत है पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाजें। सिद्धार्थ गरिमा ने इसे लिखा है और इसकी धुन बनाई है टबी पारेख, साहिल प्रीतेश और संजीव सेन ने।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार हम आपके लिए लाएंगे पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगीनामा में विश्व को रॉक गार्डन जैसी अविश्वसनीय धरोहर प्रदान करने वाले महान कलाकार नेकचंद और रॉक गार्डन की अनोखी कहानी उन्हीं की जुबानी आज दिन में 11 बजे।
2: मैंने सोच समझ के कुछ नहीं बनाया जी, ऐसे ही अपनी आदत के मुताबिक के खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ काम करना है, देखते रहना है। ऐसे जैसे पत्थर में लाने शुरू किए पहाड़ों से, पहाड़ों पे गया, पत्थर मैंने देखे, उनकी कलेक्शन की, वो ऐसे लगते थे जैसे उनमें लाइफ है।
1: तो FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज

अ फ्लाइंग जेट, इस फिल्म का गीत सुनिए सुमिधा करमे की आवाज में। प्रिया सरारिया का लिखा यह गीत, सचिन जिगर की आवाज।

0: चलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
4: तुम आ गए हो, पूरा गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
5: और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
6: विविध भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रलोक। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर।

0: जनगणना के पहले पड़ाव विच हाउस लिस्टिंग अते हाउसिंग सेंसस यानी तुहाडे घर दी गिनती होवेगी। आओ अपनी भागीदारी नाल इनू सफल बनाइए। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े अते देश अगे वधे। सेंसस 2027 साडी जनगणना साडा विकास।
1: और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार।
2: आज का अखबार।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता कपूर, आज हूं आपके साथ। कार्यक्रम है आज का अखबार। शुभ रविवार और आप सभी को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, जब भी प्यार की बात होती है, दुलार की बात होती है, तो एक ही शब्द हमारे जहन में आता है और वो है माँ। जी हाँ, माँ, प्यारी माँ। और आज हम मना रहे हैं मातृ दिवस, मदर्स डे। यूं तो हमारी पूरी जिंदगी, हमारा जीवन का

मां के ऋण को चुकाने के लिए, लेकिन यह दिन समर्पित है मां के प्यार, त्याग और समर्पण को सम्मान देने के लिए। मां जो कि हमारी पहली शिक्षक है, हमारी दोस्त है, एक घनी छांव है जो जीवन की तपती दोपहरी को भी आरामदायक बनाती है, अपनी दुआओं से हमें हर तकलीफ से बचाती है। कहते हैं कि भगवान जो है वो हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए भगवान की सबसे खूबसूरत रचना है मां, जो अपना हर दर्द छुपाती है, हर हाल में मुस्कुराती है और वक्त आने पर अपने बच्चों के लिए हर तकलीफ, हर मुसीबत से लड़ जाती है। तो आज का दिन मां के नाम।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवा में इस बार हम आपके लिए लाएंगे पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में विश्व को रॉ गार्डन जैसी अविश्वसनीय धरोहर प्रदान करने वाले महान कलाकार नेकचंद और रॉ गार्डन की अनोखी कहानी उन्हीं की जुबानी आज दिन में 11 बजे।
1: मैंने सोच समझ के कुछ नहीं बनाया जी, ऐसे ही अपनी आदत के मुताबिक के खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ काम करना है, देखते रहना है। ऐसे जैसे पत्थर में लाने शुरू किए पहाड़ों से, पहाड़ों पे गया, पत्थर मैंने देखे, उनकी कलेक्शन की, वो ऐसे लगते थे जैसे उनमें लाइफ है।
0: तो FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11

आज का अखबार कार्यक्रम में आइए अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों के साथ कुछ खेल समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना दौरे पर, लगभग 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वीं वर्षगांठ समारोह में लेंगे भाग और करेंगे आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का किया दौरा, क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का लिया जायजा और कहा भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को करेगी संरक्षित। आज नई दिल्ली में सीबीएसई और एम्स आयोजित करेंगे शिक्षा एवं मानसिक विकास सम्मेलन, जिसका उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना। केंद्र सरकार ने जारी किए श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश, जिससे मिलेगी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण की सराहना की और कहा देश की रक्षा तैयारियों को इस उन्नत मिसाइल से मिलेगी अभूतपूर्व मजबूती। आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में 75वें वर्ष पूरे कर रहा है सोमनाथ मंदिर, अमृत पर्व पर उपस्थित रहेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण किया। ईरान ने ईरानी जहाजों पर हमले के जवाब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दी हमले की चेतावनी। यूक्रेन के साथ युद्ध है अब समाप्ति की ओर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान। एशियाई मुक्केबाजी में भारत की 9 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंची और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। श्रोताओ, ये तो थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों के साथ कुछ खेल समाचार। अब सुनवाते हैं आपको एक गीत।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए कार्यक्रम में अब आपको लिए चलते हैं रीजनल हेडलाइंस की ओर, कुछ खबरें पंजाब और हिमाचल से। शिक्षा सुधार में चमका पंजाब, किया सीखने के स्तर, डिजिटल सुविधाओं, छात्र शिक्षक अनुपात और लड़कियों की शिक्षा में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन। नशे ने छीना इकलौता सहारा, मानसा में नशे की ओवरडोज से 20 साल के बॉक्सिंग खिलाड़ी की मौत, मजदूरी कर बेटे को बनाया था खिलाड़ी।

शनिवार को सीएम भगवंत मान ने जरूरतमंद परिवारों को राशन किटें बांट। धूरी में मेरी रसोई योजना की लॉन्च, 40 लाख जरूरतमंद परिवारों को मिलेंगी पोषण युक्त राशन किटें मुफ्त में। पीएसपीसीएल को झटका, हाईकोर्ट ने पुराने आदेश किए रद्द। पति की 17 साल की सेवा के लिए विधवा पत्नी को माना पेंशन योग्य। जालंधर और अमृतसर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर आईईडी ब्लास्ट के बाद खुफिया विंग ने जारी किया अलर्ट। आईएसआई ने ड्रोन से भेजी गोला बारूद की खेप, डिफेंस एरिया, थाने और धार्मिक स्थान निशाने पर। सीआईए स्टाफ ने 3 किलो हेरोइन समेत गोइंदवाल बाईपास से महिला तस्कर को किया अरेस्ट। तस्कर के तार पाकिस्तान स्थित तस्करों से जुड़े होने के संकेत। डिप्रेशन, ऑफिस लॉबिंग बनी सुसाइड की वजह। शिमला नगर निगम अकाउंट ऑफिसर रामेश्वर के सुसाइड नोट से मचा हड़कंप। परिजनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग। हिमाचल में बार बार बादल फटने की घटनाओं का होगा वैज्ञानिक अध्ययन। सीएम ने यूनिवर्सिटी के एचआईएम को दिए जांच निर्देश। हिमाचल में कल से बारिश बर्फबारी के आसार, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। श्रोता, दूरदर्शन चंडीगढ़ से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के तहत आज दोपहर 2:20 पर होगा कार्यक्रम हेल्थ शो। नेत्र विज्ञान विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत सुकीजा से होगी बातचीत। दूरदर्शन हरियाणा पर आज 3:30 पर आप देखेंगे हरियाणा डायरी। 4 बजे महफिल, 4:30 पर चंडीगढ़ दर्पण और 5 बजे सरकार आपके द्वारा। ये तो थी रीजनल हेडलाइन के साथ कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब आपको सुनाएंगे ये गीत।

0: ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਂਸਸ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜੇ, ਹਰ ਘਰ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸੈਂਸਸ 2027 ਸਾਡੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ।
1: वेलकम बैक दोस्तों, कार्यक्रम आज का अखबार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। चलिए बात करते हैं शहर की कुछ खबरें ट्राई सिटी से। सेक्टर 22 बी में द पिकैडली होटल में आज किया जाएगा ग्रैंड ट्रेवल मेला आयोजित। देश विदेश टूर पैकेज की दी जाएगी जानकारी, एंट्री होगी फ्री। गोवा ट्रिप का बम्पर ड्रॉ भी होगा और धार्मिक स्थलों की यात्रा भी। रजिस्टर करने के लिए 8691095204 पर करें मिस्ड कॉल। नासा सैटेलाइट्स ने पकड़े कंक्रीट हीट ट्रैप। शहर के औसत तापमान से इंडस्ट्रियल एरिया 7 डिग्री गर्म। श्री कार्तिकेय सेवा टेंपल में 37वें वार्षिक उत्सव और चंडीगढ़ तमिल संगम के 56वें समारोह में उमड़े श्रद्धालु। पंजाब यूनिवर्सिटी में PUPG लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2026 का शेड्यूल किया जारी। एंट्रेंस टेस्ट होगा 28 जून को। 13 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 17 जून आवेदन फॉर्म पूरा करने की अंतिम तिथि। PUCET PG के आवेदन शुरू, एंट्रेंस एग्जाम 19 से 21 जून तक। मरीजों की डाइट के नाम पर करोड़ों के घपले में CBI की एंट्री, रिकॉर्ड किया जब्त। चंडीगढ़ में बनेगा पहला सरकारी स्ट्रीट फूड हब। रॉक गार्डन सेक्टर 42 और 34 में साइट की तलाश। योग से फिट होगा चंडीगढ़। शहर के सरकारी स्कूलों और हेल्थ सेंटर्स को मिलेंगे अपने अपने योग गुरु।

0: श्रोताओ, आज है मातृ दिवस और शहर के सभी अखबारों में है माँ के नाम की धूम। बच्चे का पहला यकीन, पहला स्वाद, पहला आसरा, सहारा और सब कुछ है माँ। तो आइए सेलिब्रेट करते हैं आज का दिन माँ के साथ, माँ के नाम। माँ को भी दीजिए उसका मी टाइम और बोलिए हैप्पी मदर्स डे माँ।
1: आवड

0: दोस्तों ये तो था आज का अखबार। 8 मई से 12 मई तक हम मना रहे हैं यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक और आज का हमारा हेलो चंडीगढ़ का विषय है उसी से संबंधित, ना पहुंचने से देर भली। हमें रहेगा आपकी फोन कॉल्स का इंतजार। अब समाप्त होता है कार्यक्रम आज का अखबार। अपनी रेडियो संगनी बबीता कपूर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज का अखबार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का अखबार। इस समय आप हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के संग FM 107.2 MHz पर। कुछ ही पलों में 10 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंच गए हैं और वे इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं आइए सुनते हैं उनका संबोधन
1: पहली वर्षगांठ मनाई है और कल सुबह 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75

0: वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं। मैं आज आपके बीच बंगलुरु की इस धरती से माता अन्नम्मा उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
1: बाद में प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में 9400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में भी शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय अब से कुछ देर में चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा।
2: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। श्री रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के पांचवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। तिरुपति में आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में सफल और शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: जनगणना के पहले पड़ाव विच हाउस लिस्टिंग अते हाउसिंग सेंसस यानी तुहाडे घर दी गिनती होवेगी। आओ अपनी भागीदारी नाल इनू सफल बनाइए। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े अते देश अगे वधे। सेंसस 2027 साडी जनगणना साडा विकास।
1: कार्यक्रम हैलो चंडीगढ़ लेकर हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां।

0: ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹਰ ਘਰ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸੈਂਸਸ 2027 ਸਾਡੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ
1: ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈਲੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਬਸ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਮੇਂ
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार हम आपके लिए लाएंगे पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में विश्व को रॉक गार्डन जैसी अविश्वसनीय धरोहर प्रदान करने वाले महान कलाकार नेकचंद और रॉक गार्डन की अनोखी कहानी उन्हीं की जुबानी आज दिन में 11 बजे।
3: मैंने सोच समझ के कुछ नहीं बनाया जी, ऐसे ही अपनी आदत के मुताबिक कि खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ काम करना है, देखते रहना है। ऐसे जैसे पत्थर में लाने शुरू किए पहाड़ों से, पहाड़ों पे गया, पत्थर मैंने देखे, उनकी कलेक्शन की, वो ऐसे लगते थे जैसे उनमें लाइफ है।
2: तो FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
1: श्रोताओ, कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि आज है रविवार और सुबह 11:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो सिटी ब्यूटीफुल। इस कार्यक्रम में आज हम शामिल करेंगे मुकद्दर का सिकंदर, चरस, एक दूजे के लिए, घायल, महबूबा और माचिस, इन फिल्मों के गीत। फिल्में हमारी और फरमाइशें होंगी आपकी, लेकिन अब समय है हमारे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ का।
4: हेलो
5: हेलो,
4: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी, हेलो चंडीगढ़,
5: हेलो चंडीगढ़।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो संगिनी बबीता कपूर। दोस्तों, यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है 8 मई से 12 मई तक, और आज के हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम का विषय भी है उसी से संबंधित, ना पहुंचने से देर भली। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे और बटोरेंगे कुछ जानकारियां, कुछ अनुभव विचार और सुनेंगे कुछ गीत भी। तो चलिए करते हैं बात, हमारे नंबर हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। बात करेंगे सुरक्षा की, समझदारी की। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोट खाई से।
0: जी राकेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर?
1: जी, आज के विषय पे मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आए दिन जो है हमारे जो है सड़क हादसे हो जाते हैं, तो इसका कारण ये है कि मैं दो कारण मानता हूँ उसकी भी। एक तो ये कि जब हम सड़कों पर चल रहे हैं सीट बेल्ट का उपयोग करें, और दूसरा ये जब आप कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी चलाते चलाते फोन पे बात ना करें। कई लोग क्या करते हैं, और एक खास जो स्टेरिंग होते हैं, कई बार फोन पे जो है लगे रहते हैं और बात कर लेते हैं, कई बार फोन गाड़ी चलाते, कई बार ऐसा होता तो कई बार ब्रेक फेल भी हो जाती। तो थोड़ी सी घटना की बात करना चाहता हूँ मैं आपके साथ
0: जी।
1: एक हमारे गांव में एक एक्सीडेंट हुआ था, वो स्पीड में गाड़ी चला रहा था, वो पिकअप थी, तो उसमें एक 4 साल की बच्ची जो है उस गाड़ी के नीचे आ गई, तो उसकी मृत्यु और स्पॉट पे हो गई।
0: जी देखिए, सड़क पर चलते सड़क पर चलते हुए देखिए राकेश जी, जितनी जिम्मेवारी सड़क पर चलने वालों की होती है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा जिम्मेवारी उस शख्स की होती है जो कि सड़क पर गाड़ी लेकर जा रहा है। क्योंकि अगर आपकी जरा सी देर के लिए भी सड़क से नजर हटी तो दुर्घटना घटने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो
1: सबसे बड़ी बात यह है कि जो सड़क में चलने वाले उनको तो सावधानी रखनी है, लेकिन कई बार जो है जो गाड़ी चालक है तो उनको भी कभी ध्यान देना चाहिए कि अगर हम क्या बोलते सड़क पे कोई रास्ता देना चाहिए, थोड़ा आराम से

0: और स्लो गाड़ी को चलाना चाहिए। कई लोग क्या करते जल्द जल्द में गाड़ी को घुमा देते हैं कि ताकि हम जल्द मंजिल तक पहुंच जाए, लेकिन ये नहीं देखते कि कहीं मनुष्य कोई पशु भी आ जाता है, इंसान भी आ जाता है, कई बार बच्चे भी आ जाते हैं सड़क के आसपास, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और कई और सबसे बड़ी बात है म्यूजिक, कई बार लोग म्यूजिक तेज सुनते, कई बार उनको ये सुनाई देता कि पीछे से गाड़ी आ रही है,
1: बिल्कुल पीछे के हॉर्न नहीं सुनाई देते हैं और इतना खो जाते हैं कई बार हम गानों के अंदर गीतों में कि हमें ध्यान ही नहीं रहता सड़क के ऊपर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि सतर्कता बरतें और ये बहुत जरूरी है कि अपने साथ साथ दूसरों का जो दूसरों की जिंदगी है वो भी आपके ही हाथ में है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में बात करने के लिए।
0: जी जी धन्यवाद।

0: दोस्तों, यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है 8 मई से 12 मई तक, और लक्ष्य है सड़क सुरक्षा, दुर्घटना निवारण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जान जोखिम में डालकर जल्दी पहुंचने से सुरक्षित और धीरे पहुंचना, और लापरवाही ना बरतना। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़। हेलो जी, नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
1: जी संदीप सोनग्रह बात कर रहा हूँ, चूरू राजस्थान से।
0: जी संदीप जी, आज के विषय के बारे में आप जानते ही हैं कि ना पहुंचने से देर भली, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: जी मैं कहना चाहूँ, हर आदमी एक जो रेलवे जो फाटक होता है वो क्रॉस करता है, तो रेलवे फाटक पर एक बात लिखी होती है
0: जी,
1: दुर्घटना से देर भली।
0: बिल्कुल,
1: ये प्रचलित का होता है
0: जी,
1: जो एक सुरक्षा सावधानी और धैर्य के महत्व को उजागर करती है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो सर मैं तो यही कहना चाहूंगा, किसी कार्य को करते समय यदि थोड़ी देर हो जाए तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन जल्दीबाजी या लापरवाही से किया गया कार्य दुर्घटना का कारण बन सकता है।
0: जी बिल्कुल, अगर कहीं पहुंचना ही है तो वक्त से थोड़ा पहले निकल जाइए, घर से 10 मिनट पहले निकल जाइए, ताकि आप जल्दी में ना रहें और अपने लक्ष्य पर भी सही समय पर पहुंच सकें।
1: हाँ मैम, जल्दी पहुंचने की चाहत में लोग अक्सर या तो नियमों का जो उल्लंघन है वो भी तोड़ देते हैं, वो ध्यान में नहीं रखते हैं और अपनी जो जान है वो जोखिम में डाल देते हैं।
0: जी बिल्कुल, और एक बात और भी है कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चे बहुत, ये उम्र ऐसी होती है कि इसमें बच्चे बहुत ही निडर होते हैं और लापरवाह भी होते हैं, उन्हें मतलब कहते हैं ना कि

0: स्पीड थ्रिल्स, तो उनको मजा आता है उस स्पीड में। तो मतलब पेरेंट्स को ये गुजारिश है कि नाबालिग बच्चों को जो है वो वाहन चलाने की अनुमति ना दें, क्योंकि उन्हें नहीं।
1: आपने ये बात बहुत सही की, आजकल के लड़के देखते हैं जो एक्टिवा लेके या मोटरसाइकिल लेके घर से जैसे निकलते हैं वो ये नहीं देखते कि मोटरसाइकिल बैठने के बाद वो ऐसे सोचते हैं हवा में उड़ने की सोचते हैं वो।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि ये उम्र ऐसी है कि इसमें बच्चों को जो है ना वो डर नहीं लगता, जितनी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है डर भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। तो बच्चे
1: हाँ, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, वो एक निडर होते हैं।
0: जी बिल्कुल, तो ये हमारा दायित्व है, ये पेरेंट्स का दायित्व है कि हम उन्हें व्हीकल बिल्कुल ना दें, क्योंकि जब तक कि उनका लाइसेंस ना बन जाए और उन्हें पूरी तरीके से समझा बुझा ना दिया जाए कि देखो सड़क पर जा रहे हो तो जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी जान की है उससे ज्यादा उस जान की है जो सड़क पर चल रही है, तो ये बहुत जरूरी है। जी जी, और कुछ कहना चाहेंगे?
1: सही कही मैं।
0: जी शुक्रिया।
1: और जान को जोखिम में डालने के बाद में रोड पे चलते हैं ये नहीं सोचते कि आगे भी चलने वाले व्यक्ति उनके भी घर परिवार वाले भी होते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालने के बाद में बहुत से लोगों को मार भी देते हैं और कई बार अक्सर देखते भी हाईवे पे चलते हुए लड़के को।
0: जी बिल्कुल,
1: अपनी एक जिंदगी के बावजूद वो बहुत सी जिंदगी को वो मिटा देते हैं।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में बात करने के लिए।
1: थैंक यू मैम।

0: साडा विकास।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ और हमारा आज का विषय है ना पहुंचने से देर भली। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़,
2: कपूर जी को मेरी प्यार भरी नमस्ते जी।
1: आपको भी प्यार भरी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आज के विषय?
2: सेक्टर 42 चंडीगढ़ से बोल रहा जी।
1: जी सतीश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के विषय पर
2: मिलती है एक बार
1: जी,
2: दोबारा नहीं मिलती। हमारे अंग भी एक बार ही मिलते हैं, दोबारा नहीं जुड़ पाते जी।
1: जी बिल्कुल
2: ठीक है जी। ये जो शरीर है परमात्मा की देन है, ये दोबारा नहीं बनता जी।
1: जी बिल्कुल।
2: गाड़ियों के पुर्जे वगैरह तो मिल जाते हैं जी।
1: जी
2: ठीक है मैडम जी।
1: जी बिल्कुल।
2: मेरा कहना ये है, हम नियम पे नियम तोड़ते हैं। रूल एंड रेगुलेशन जो ट्रैफिक के हैं, हाथ से ज्यादा तोड़ते हैं, रॉन्ग साइड कर लेते हैं जल्दी पहुंचने के चक्कर में। अपना क्रॉसिंग जहां पे नहीं है क्रॉसिंग करते हैं जी।
1: जी बिल्कुल, सिग्नल तोड़कर भाग जाते हैं, शॉर्टकट लेने की
2: रेड लाइट जंप कर दिया, ओवरटेक करते हैं क्योंकि जल्दी पहुंचने के टेक में हम जो ओवरटेक जोन नहीं है वहां ओवरटेक करते हैं जी, लेन बदलते हैं
1: जी। बिल्कुल,
2: ओवरटेकिंग तो हद ही तोड़ देते हैं जी, ओवर स्पीड कर देते हैं, जहां स्पीड लिमिट 50 की है वहां 100 की कर देते हैं जी।
1: जी
2: फिर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कहां क्रॉसिंग है कहां तेज है, आनन फानन में गाड़ियों से टकराने की गुंजाइश रहती है जी।
1: देखिए इस सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि जो सिग्नल तोड़ रहा है उसका तो देखिए एक्सीडेंट होना है ही है, लेकिन जो बंदा जो व्यक्ति जो है वो सही से गाड़ी चला रहा है, पूरे सिग्नल्स भी फॉलो कर रहा है,
2: उसकी भी जान खतरे में है, बेकसूर मारा जाता है जी।
1: जी बिल्कुल,
2: इसका कोई कसूर नहीं, वो मारा जाता है जी।
1: बिल्कुल। तो ये देखिए हमारा जो कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ है, इसका लक्ष्य यही है कि हम ऐसे सामाजिक जो विषय हैं वो लोगों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं आपकी और हमारी बातों से सचेत हो सके।
2: बाकी बच्चों से जी चाबियां मोटरसाइकिल की गाड़ी की छिपा कर रखें, जब आप घर में कोई खाना खा रहे हैं या आराम कर रहे हैं बच्चे चाबी उठा लेते हैं जी, मोटरसाइकिल वगैरह ले जाते हैं जी घर के, 14-15 साल के बच्चे भी ले जाते हैं चोरी से जी।
1: जी बिल्कुल,
2: तो हमें चाबी छुपा के रखनी चाहिए जी।
1: बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले तो समझाएं कि, और ऐसी मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि हमें ऐसी जगहों पर ऐसे मेरे ख्याल से तो हॉस्पिटल्स में भी बच्चों को विजिट करवाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि अगर
2: उनका हालात देखो जी कैसे इंजर्ड पड़े हैं जी, घायल लोग कैसे पड़े हैं जी, चल फिर नहीं सकते।
1: बिल्कुल जी, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या कैसी हालात होती है माँ बाप की भी, और जो सफरर है जिसका एक्सीडेंट हुआ
2: सारा परिवार दुविधा में आ जाता है जी।
1: बिल्कुल,
2: कौन अपना केयर टेकिंग करेगा, बस जो घायल हो जाता बड़ा मुश्किल हो जाता है जी।
1: बिल्कुल,
2: परिवार का रोटी पानी सब मुश्किल हो जाता है जी।
1: जी इसीलिए तो कह रहे हैं कि ना पहुंचने से देर भली की।
2: एक बात और है जी,
1: जी
2: हमें अपना सब कुछ ध्यान से चलना चाहिए। अब जब हमें पता है भी जाना है, थोड़ा पहले ही टाइम बचा के चले जाएं जी।
1: जी बिल्कुल सही बात है कि आप थोड़ा घर से ही जल्दी निकल
2: जब पता है हमें जाना है, दफ्तर है ऑफिस में 9 बजे ड्यूटी देनी है तो पहले चले जाए, पता तो होता ही है हमें जी, हम जाना है।
1: बिल्कुल, तो ये
2: पहले ही ले ले।
1: बिल्कुल, तो ये पेशेंस और धैर्य की कमी, लोगों में जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो लक्षण हैं, ये वजह बन जाते हैं।
2: एक और बात है जी, हम गाड़ी को दुरुस्त नहीं रखते, उसके ब्रेक नहीं चेक करते, गाड़ी में फ्यूल है हवा है कुछ नहीं चेक करते जल्दबाजी में।
1: बिल्कुल,
2: अपनी मस्ती में रहते हैं, गाड़ी की हालात कैसे हैं कुछ नहीं केयर टेकिंग करते जी।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका कार्यक्रम में बात करने के लिए, आपने बहुत सी जानकारियां हमारे साथ साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया।

जनगणना दे पहले पड़ाव विच हाउस लिस्टिंग अते हाउसिंग सेंसस यानी तुहाडे घर दी गिनती होवेगी। आओ अपनी भागीदारी नाल इनू सफल बनाइए। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े अते देश अगे वधे। सेंसस

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं.
1: तीखा कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल जो किया जाता है फर्स्ट क्वालिटी सरसों से तैयार और जिससे हो जाएगा आपको प्यार. अभी ऑर्डर करें www.

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ और हमारा आज का विषय है ना पहुंचने से देर भली। आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
1: नमस्कार मैडम, राजेश कुमार चौहान जालंधर से।
0: जी चौहान साहब, क्या हाल है आपका?
1: बढ़िया मैडम, आप बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ। आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
1: मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल कहा है कि कभी ना पहुंचने से देर वाली।
0: जी
1: पर मैडम मैं यहाँ दो चीजें कहना चाहता हूँ। जहाँ हम जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो स्पीड में चलने का कोई मतलब नहीं, ट्रैफिक नियमों का तोड़ने का कोई मतलब भी नहीं। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम कहीं समय पर पहुंचना, हमें जैसे ऑफिस पहुंचना है या कहीं पहुंचना, तो हम 10 मिनट पहले भी निकल ही सकते हैं घर से, 15 मिनट पहले निकल लो, पता भी हमारे में ट्रैफिक आएगी और हमें प्रॉब्लम होगी। तो मैंने देखा कि सुबह सुबह जब लोग ऑफिस को जाते हैं तो पूरे टाइम पे निकलेंगे या थोड़ा 2-4 मिनट लेट निकलेंगे, फिर अंधाधुंध वाहन चलाएंगे तो खुद की जान और दूसरों की जान को भी आफत में डालेंगे।
0: जी बिल्कुल, और इसके पीछे मेरे ख्याल से एक और कारण भी है, वो ये है कि हम लोग रात को समय पर सोते नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि देर रात जागने का आजकल ट्रेंड बन गया है, मोबाइल पर लगे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं और समय का बिल्कुल अंदाजा नहीं रहता, कब सोने का समय निकल गया हमें पता ही नहीं चलता।
1: और जब हम हाँ जी मैडम, एक हैवी व्हीकल है, जैसे कोई लंबा सफर कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि अगर उनको लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है तो 2 मिनट, 10-15 मिनट या आधा घंटा या घंटा के रेस्ट कर लो साइड में रुक के।
0: बिल्कुल,
1: वैसे भी गवर्नमेंट ने भी ऐसा इंतजाम किया हुआ ट्रक ड्राइवरों के लिए खास करके कि वो साइड में कहीं रुक के आराम करने के लिए उनको फैसिलिटी दी हुई है।
0: जी टैक्सी ड्राइवर्स तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ बात मैं ये बोल रही थी कि अगर आप लोग रात को समय पर सोते हैं तो सुबह आप जल्दी उठेंगे, जल्दी उठेंगे तो आपके जो रोजमर्रा के जो काम है, सुबह के जो काम है, वो जल्दी निपटाएंगे और उसकी वजह से आप समय पर अपने

0: ऑफिस पहुंचेंगे, आपको हड़बड़ाहट नहीं रहेगी, आपको कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, इसका भी बहुत ज्यादा एक योगदान है।
1: बहुत जरूरी है, ये तो जरूरी है, इस ट्रैफिक के लिए भी है और हमारे बाकी चीजों के लिए बहुत जरूरी है। टाइम की जो सेट है, ये सेटमेंट है, वो करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ जी मैम,
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी कार्यक्रम में बात करने के लिए।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। श्रोता, एक और जानकारी कि आज है रविवार और सुबह 11:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो सिटी ब्यूटीफुल। इस कार्यक्रम में आज हम शामिल करेंगे मुकद्दर का सिकंदर, चरस, एक दूजे के लिए घायल, महबूबा और माचिस, इन फिल्मों से गीत। फिल्में हमारी और पसंद रहेगी आपकी। तो चलिए अब हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो, नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। जी, क्या कहना चाहेंगे?
1: जी,
0: बिल्कुल, क्या कहेंगे आज के विषय पर?
1: आज के विषय में यही कहेंगे जी, दुर्घटना से देर भली और अपने घर से आराम से जाओ जी, हेलमेट लेकर सड़क पे देखभाल का जाओ जी। आजकल का वैसा है जी विषय, ये लोग आजकल देख देनी एक्सीडेंट कर देते हैं जी एक दूसरे को।
0: बिल्कुल,
1: और इस विषय, ये तो बहुत बड़ा विषय है जी। मैं तो खुश हूँ जी आप जब ऐसे से विषय लेकर आओ ना जी।

0: जी
1: मेरी तबीयत खुश हो जी
0: जी हमारी हमेशा ही ये कोशिश रहती है कि समाज से और हम सभी से जुड़े हुए जो विषय हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएं, और क्योंकि हम मना रहे हैं यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, तो इसलिए आज का विषय रहा ना पहुंचने से देर भली। और कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: बहन जी और कुछ क्या कहना चाहेंगे जी, आज काफी दिनों में लगा जी मेरा ये, और मेरे भाई साहब है रमेश कपूर, मिल ही गए जी मेरे को, कई दिन से लगाऊं जी मैं फोन लगता ही नहीं
0: चलिए रमेश कपूर जी ना से ही तो बबीता कपूर से आपकी बात हो रही है इस समय।
1: अच्छा ठीक है बहन जी, ठीक है जी
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: वैसे बहन जी काम ऐसा जी, हम दूर से बोल रहे डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र गाँव जी
0: जी,
1: मारा थोड़ा जल्दी ले करो जी कॉल, मारी कॉल ठहले करो जी
0: देखिए बात ऐसी है कि हमें नहीं पता कि कहाँ से कॉल आ रहा है, हमें नहीं पता कि कौन कॉलर है, ये जो हम कॉल लेते हैं ये रैंडमली उठाते हैं, हमें नहीं पता होता कि मतलब इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है।
1: मेरी तो भाई साहब से कई बार बात हुई रमेश कपूर जी से
0: जी,
1: और एक आध बार एक बहन जी से बात हुई थी और फिर लगे नहीं जी कई दिन।
0: चलिए आज मुझसे बात हो गई आपकी
1: जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में बात करने के लिए।
1: ठीक है धन्यवाद जी,
0: धन्यवाद जी।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ और हमारा आज का विषय है ना पहुंचने से देर भली। देखिए जिस दौरान गाना बज रहा होता है उसी दौरान कुछ कॉल्स भी फ्लैश हो रहे होते हैं और हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब गाना पूरा सुने और आपको सुनाएं या फिर कॉल लें, क्योंकि जितने प्यारे गीत होते हैं उतनी ही प्यारी और समझदारी वाली बातें हमारे कॉलर्स की भी होती हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़
1: जी।
0: नमस्कार जी, थोड़ा सा शोर से दूर हो जाइए, कहीं एकांत में आ जाइए आप।
1: दीदी मैं सुबह शिवा तिवारी सेक्टर 9 पंचकूला होटल से बोली सर।
0: जी जी
1: आप कैसे हो दीदी? सुबह भगवान की कृपा से आप भी पूरे बिजली भारती को अच्छा रहे, हमारा दुआ है। और आज के प्रोग्राम दीदी ये है कि जो नियम पे पालन करना चाहिए, क्योंकि लाइट है तो उसको देख कर चलना चाहिए, यंग से जन से बचना चाहिए, ये अपना कर्तव्य है। देखिए
0: जी बिल्कुल, हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपना और हमारे आसपास चलने वाले सभी का ध्यान रखें।
1: हाँ तो ये जरूरी, क्योंकि आदमी क्या करते हैं कि हाथ में लेके हेलमेट चलेंगे, दूसरा चीज क्या कि वो लाइट देखेंगे नहीं, जो लाल बत्ती है जब फिर भी उसमें निकलने का कोई कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नियम का यह है कि जो नियम का पालन है उसको थोड़ा निभाना चाहिए। तो फिर आपका शरीर जब जान है तो थोड़ा जान है
0: जी, बिल्कुल जान है तो जान है,
1: फायदे किया
0: जी जी। और तिवारी साहब आप कौन सा व्हीकल आप चलाते हैं?
1: आई दीदी
0: आप क्या चलाते हैं? आपके पास साइकिल है, स्कूटर है, क्या है आपके पास?
1: नहीं, हमारे पास बाइक है, इनके गांव में है, यहाँ पे मैं तो साइकिल से इसमें चलता हूँ।
0: अच्छा, तो साइकिल
1: से जान लो कि 15-16 साल हो गया, लेकिन मैं साइकिल नहीं रखा हूँ।
0: तो बहुत अच्छी बात है, साइकिल चलाना तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छी बात है।
1: और गांव में भी मैं कोई जाता हूँ तो मैं साइकिल इसमें चलाता हूँ, पहले तो मैं ज्यादा चलाता था, लेकिन अब तो अब क्या कि अब ज्यादा तो चलाई नहीं, लेकिन 2-4 किलोमीटर थोड़ा चल जाता हूँ, पहले तो गाँव में 70-80 किलोमीटर पे चलते।
0: अच्छा,
1: लेकिन अब आपको ज्यादा थोड़ा नहीं चल मिलता, लेकिन 2-4 किलोमीटर से चलता ही
0: नहीं, सेहत के लिए तो बहुत अच्छी बात है। आप चलते हैं, पैदल चलते हैं, आप साइकिल चलाते हैं, और साइकिल चालकों के लिए तो एक अलग ट्रैक भी बना रहता है ना सड़क पे?
1: हाँ वो तो चंडीगढ़ में था पहले, आप तो पंचकूला में बीच में हो गया है। अच्छा। उसी पे साइकिल का जो है उसी पे जो चलना चाहिए उसी पे आपको चलता हूँ, भागना ही नहीं चाहिए। कभी कभी जो बाइक वाले भी उसी पे आ जाते हैं, लेकिन चलो ठीक है,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, अपने आसपास वालों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, आप सजग हैं, सजग नागरिक हैं आप।
1: और
0: जी
1: दीदी जैसे ड्यूटी 12 बजे हमारा है तो मैं निकल देता हूँ 11 बजे।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए आपसे पहले भी जो हमारे कॉलर्स थे उन्होंने ये बात जरूर कही है कि अगर आपको कहीं पहुंचना है तो समय से पहले आप घर से निकल चलिए, ताकि आपको कोई जल्दबाजी ना रहे, आप मतलब तेज अपना व्हीकल ड्राइव ना करें।
1: और फिर जल्दबाजी सुबह करने से दीदी तभी तो खतरा होता है।
0: बिल्कुल,
1: जब आराम से निकलेगा या घंटा तो ये है कि आराम से जाएगा और फिर जैसा भारत जाएगा कोई को जल्दी नहीं रहेगा, और जो थोड़ा लेट में निकलेगा वो भागेगा तो आगे पीछे देखेगा नहीं तो इसीलिए खतरा हो जाता।
0: अच्छा तिवारी जी एक और बात बताइए कि आप मोबाइल यूज करते हैं चलाते वक्त साइकिल?
1: नहीं, घर पे तो दीदी मैं तो रखा हूँ, ये बाजा भी रखा हूँ और मोबाइल मैं जो हमेशा ये अभी दीदी क्या कितना 4:15 जो ये दोपहर को 2:15 बजे ये नहीं आ रहा था, ये तो आने लगा और हम पूरा प्रोग्राम सबको सुनता हूँ मोबाइल से।
0: नहीं ये
1: रहता हूँ
0: मोबाइल के बारे में मैंने इस वजह से पूछा कि आप क्या पैदल चलते हुए या साइकिल चलाते वक्त मोबाइल पर बात तो नहीं करते?
1: ये नहीं बात तुमको करना होगा तो मैं जब खाली समय होता हूँ और साइड पे तो रुक के अभी तो आज मैं दीदी आया हूँ ममता देवी दर्शन करने को, तो इसीलिए थोड़ा ये जो स्वर हो रहा है लाइन में हूँ तो हम फोन आप लगाता ही था 10 बजे।
0: तो चलिए हमारी तरफ से भी शेरावाली माता को आप माथा टेक दीजिएगा। आज आपको पता है ना कि आज मातृ दिवस भी है।
1: तो इसीलिए बहुत भीड़ है लाइन में, मैं तो जीते खड़ा हूँ, जान लो कि 10:15 से अभी तक लाइन में, अभी तक नहीं हुआ, घूमता हूँ।
0: कोई बात नहीं।

0: पेशेंस धैर्य रखिए, और धैर्य रखेंगे तो जरूर माता के दर्शन आपको हो ही जाएंगे कार्यक्रम में।
1: नहीं भी दीदी, तो आपके लिए भी माता जी को अभी जब दर्शन होगा तो आपके लिए भी दुआ तो मांगना है हमको, पूरे परिवार को।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ये जो प्यार है ना, ये ही मतलब हमें आपकी तरफ खींचता है, और हमारा ये जो संबंध है इसी की वजह से प्रगाढ़ बना हुआ है कि ये प्यार बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में बात करने के लिए।
1: ठीक है दीदी, ठीक है, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ और हमारा आज का विषय है ना पहुंचने से देर भली। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़। हेलो,
1: हाँ जी रविता जी।
0: जी जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम रविकांत गर्ग है, मैं सेक्टर 126 मॉल से बोल रहा
0: हूँ। जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर?
1: मैडम मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो ये है ना दुर्घटना से
0: जी
1: होती है
0: जी जी,
1: क्योंकि दो मिनट की बात होती है और पूरा जिंदगी के लिए बंदे को पछतावा रह जाता है।
0: बिल्कुल,
1: अभी थोड़े दिनों की कल परसों की बात है, मैं तो सोशल मीडिया से मेरे को पता चला है
0: जी,
1: यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ कहीं बठिंडा साइड में, तो वो भी वही था कि रोलर के साथ हुआ एक्सीडेंट ना जी। दो मिनट की बात, उन्होंने शायद जल्दबाजी में क्रॉस को क्रॉस करने की कोशिश की और स्कूटी उनकी स्लिप हो गई और दोनों बेचारे दादा पोते थे क्या थे, उनका

0: निधन हो गया उनका ना, तो मतलब ये चीज मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में रहता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कई रेड लाइट क्रॉस करके निकल जाते हैं, सिर्फ 2 मिनट की बात होती है, और मैं देखता हूँ काफी एक्सीडेंट होते हैं इसकी वजह से भी ना
1: जी। बहुत दुख की बात है ये कि
0: हाँ जी हाँ जी
1: दूसरों की वजह से कई बार मासूम जिंदगियां जो हैं वो खो जाती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि सड़क पर चलते हुए अपने साथ साथ अपने साथ चलने वाली जिंदगियों का भी ध्यान दें और धैर्य रखें, ध्यान से गाड़ी चलाएं, समय पर निकलें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें।
0: बिल्कुल
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: मतलब मोबाइल वही क्या, टू व्हीलर पे भी मोबाइल अपना करते सुनते कान, हेलमेट में खाया हुआ मोबाइल या कुछ करते तो ध्यान ही डाइवर्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं मतलब उससे फर्क पड़ता कि अगर आप 2 मिनट वेट करके मोबाइल सुन लें साइड में, रोड साइड में खड़े होकर कुछ कर लें तो बेटर रहेगा ये, और जिंदगी भर के लिए पछतावा रहेगा अगर कुछ हल्की सी वजह से हो जाए ना ये चीज।
1: बिल्कुल, देखिए हमारे कार्यक्रम का लक्ष्य ही ये है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये बात पहुँचे, क्योंकि देखिए ज़िंदगी एक बार चली गई तो लौटकर कभी नहीं आती। मोबाइल पर जो बात है वो बाद में भी की जा सकती है, दूसरा जो है व्यक्ति वो इंतज़ार कर सकता है, ऐसा ना हो कि उस व्यक्ति से हम कभी भी बात ना कर पाए। तो बेहतर है कि अपना ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। कार्यक्रम में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद मैडम, बहुत
1: शुक्रिया। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
2: नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम
1: जी। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
2: मैं भूपेंद्र सिंह हंस बोल रहा हूँ जी, मंडी गोविंदगढ़ जिला फतेहगढ़ साहिब से।
1: जी भूपेंद्र सिंह जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर आप?
2: धन्यवाद मैडम। मैडम मैं ड्राइविंग करता हूँ, ट्रक चलाता हूँ
1: जी,
2: तो इसकी थोड़ी मुझे, आज आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया है
1: जी।
2: और मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मैडम ज्यादातर 90% मैंने ये देखा है कि लोग जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी में ही दुर्घटनाएं होती हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो जो लोग धीरज से नहीं चलते, ड्राइविंग सही नहीं करते, जल्दबाजी में और मोबाइल फोन, घर से कार में निकलेंगे और तुरंत निकलते ही मोबाइल कान पे लगा लेंगे और उसके बाद में ध्यान उनका आधा मोबाइल की तरफ चला जाता है, आधा ड्राइविंग की तरफ होता है, ठीक से नहीं वो कर पाते
1: जी।
2: तो मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि इसके लिए ये है कि आप जब भी मोबाइल से बात करें, गाड़ी खड़ी करके रुक के बात करें आराम से, और उसके बाद आप चलें रोड पे और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, लाल बत्ती को जंप ना करें। ज्यादातर मैं मैडम यही, जो मैं रोड पर, मैं खुद डेली चलता हूँ मैडम, तो मैं यही महसूस करता हूँ कि लोग जल्दबाजी ज्यादा करते हैं और जल्दबाजी में ही दुर्घटनाएं होती है।
1: बिल्कुल, देखिए आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा तजुर्बा होगा इस बात का कि लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं जब वो सड़क पर अपनी गाड़ी लेकर उतरते हैं। तो आप तो रोज़ आए दिन आप देखते रहते होंगे कि कुछ ना कुछ जो दुर्घटनाएं हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो कारण है वो यही आपने बताया कि लोग लापरवाही बरतते हैं और जल्दबाजी करते हैं।
2: जी मैडम, पेशेंस नहीं रखते हैं लोग जो है, ये अगर जगह मिलती है कभी दाहिने से निकालते हैं, कभी बाएं से निकालते हैं, यानी जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, ट्रैफिक के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, ज्यादातर इसी वजह से दुर्घटनाएं होती है
1: जी। और भूपेंद्र सिंह जी, आपने ये भी जरूर आपने नोटिस किया होगा कि ऐसा करने वालों में किस उम्र की तादाद सबसे ज्यादा रहती है?
2: मैडम यंग एज ही होते हैं ज्यादातर तो
1: जी। इसी वजह से हम बार बार पेरेंट्स से ये गुजारिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को समझाएं, उन्हें कम उम्र में बिल्कुल भी गाड़ी चलाने की अनुमति ना दें, जब तक उनका लाइसेंस नहीं बन जाता तब तक उनके हाथ में गाड़ी ना थमाएं।
2: जी जी जी मैडम, ये बहुत जरूरी है, आपने बहुत अच्छी बात बताई है
1: जी,
2: ये बहुत जरूरी है मैडम
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र सिंह जी कार्यक्रम में बात करने के लिए।
2: थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच
1: जी।
3: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार हम आपके लिए लाएंगे पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में विश्व को रॉक गार्डन जैसी अविश्वसनीय धरोहर प्रदान करने वाले महान कलाकार नेकचंद और रॉक गार्डन की अनोखी कहानी, उन्हीं की जुबानी, आज दिन में 11 बजे।
4: मैंने सोच समझ के कुछ नहीं बना।

0: जी ऐसे ही अपनी आदत के मुताबिक खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ काम करना है, देखते रहना है। ऐसे जैसे पत्थर में लाने शुरू किए पहाड़ों से, पहाड़ों पे गया, पत्थर मैंने देखे, उनकी कलेक्शन की, वो ऐसे लगते थे जैसे उनमें लाइफ है।
1: तो FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां, आज दिन में 11 बजे।
2: कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में चलते चलते हम बात कर रहे हैं एक और कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
3: नमस्कार जी, मैं अशोक बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से।
2: जी नमस्कार अशोक जी, क्या हाल है आपका?
3: जी मैं कहना चाहता हूँ कि टाइम को मैनेज करें, आधा घंटा जल्दी घर से चले
2: जी,
3: और इससे आप बहुत सारे हादसों को आप बच सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।
3: टाइम शॉर्ट होगा तो तेज रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे और कहीं पे गाड़ी लग सकती है, कार हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, आप टाइम को मैनेज करके चले, हेलमेट पहने
2: जी
3: और अपने गंतव्य पे पहुंचे, यही मेरा मैसेज है।
2: जी अशोक जी, अब हम भी टाइम मैनेज करने वाले हैं क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है वो समाप्ति की ओर है। आपसे बात करने के लिए
3: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: ना पहुंचने से देर भली। आज के हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आज इस विषय पर हम और आप कर रहे थे बात। आप सभी सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ आपकी रेडियो संगिनी बबीता कपूर लेती है आपसे विदा। नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो चंडीगढ़।

0: अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़
1: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के

0: 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां। यादों का कारवां आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न। आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशेष श्रृंखला यादों का कारवां के दूसरे एपिसोड में मैं हूं आपका हमसफर रमेश कपूर। नमस्कार। दोस्तों, आज का ये सफर हमें ले जाएगा कला, कल्पना और मेहनत की अद्भुत दुनिया में। रॉक गार्डन और उसके निर्माता नेकचंद जी की प्रेरणादायक कहानी के साथ टूटे फूटे सामान और बेकार वस्तुओं को अपनी सोच और हुनर से नया जीवन देने वाले नेकचंद जी ने एक ऐसा संसार रचा जो आज पूरी दुनिया में रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है। तो आइए यादों और प्रेरणा से भरे इस कारवां में हमारे साथ जुड़िए और सुनिए नेकचंद और रॉक गार्डन की अनोखी दास्तां। पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगीनामा में।
1: जिंदगीनामा, शानदार जिंदगी की बेमिसाल कहानियां।

सतत अभ्यास, अथक प्रयास और अनंत निष्ठा, ये तीनों किसी को भी अविश्वसनीय मुकाम तक पहुंचाने के मूल मंत्र हैं। कुछ लोग इन्हीं के फल स्वरूप सफलता की उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाती है।

0: ऐसा एक उदाहरण कायम किया है पद्मश्री नेकचंद सैनी ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त नेकचंद ने विश्व को रॉक गार्डन के रूप में एक ऐसी अविश्वसनीय धरोहर प्रदान की है जो कला के क्षेत्र में उत्कृष्टता का जीवंत उदाहरण है। आइए सुनते हैं नेकचंद जी के जीवन के अनछुए पहलुओं और उपलब्धियों की कहानी उन्हीं की जुबानी।
1: काफी पुरानी बात है, उन दिनों जमाना कुछ और किस्म का था। उसके बाद इतने सालों के बाद आजकल जो देख रहे हैं जमीन आसमान का फर्क आ गया जमाने के चेंज में। गांव में घूमना, खेतों में घूमना, भाग दौड़ करते रहना, कभी इधर भाग गए कभी उधर भाग गए, तो ऐसे जमाना था उस वक्त।
2: और घर में कौन कौन थे आपके?
1: घर में हम पांच भाई थे।
2: और आप कौन से नंबर पे आते थे?
1: मैं बीच में आता था जी।
2: अच्छा।
1: दो छोटे दो बड़े।
2: तो माँ का प्यार और पापा का दुलार सब मिला आपको, और भाइयों का भी?
1: उस वक्त तो ऐसे थे, माँ बाप तो अपने काम में लगे रहते हैं, हम अपने खेल तमाशे में लगे रहते थे। तो जिस तरह आजकल माँ बाप प्यार करते हैं बच्चों से, उस जमाने में कोई नहीं ऐसे करता था। उस जमाने में जाओ, वो अपने काम के मस्त थे, हम अपने काम में मस्त थे, तो फर्क है जमाने में बहुत।
2: आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई और कहाँ पे आप पढ़े?
1: दसवीं तक हुई, मैं वो पाकिस्तान में स्कूल था वहीं पढ़ा।
2: तो स्कूल की कुछ यादें, स्कूल के कुछ एक ऐसे मित्र आज भी जो आपके साथ हों, कुछ शरारतें आपको कुछ बातें याद हों?
1: स्कूल के याद में पहले पहले शुरू में तो हम जब बचपन में पढ़ा करते थे छवीं क्लास तक, तो उस वक्त तो नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। नीचे एक तख्ती होती थी, एक स्लेट होती थी, उस पे लिखना, फिर दोबारा पूछना, उन्होंने दिखाना सवाल लिख के, वो कहना अच्छा दूसरा निकाल के लाओ, फिर वो स्लेट साफ कर लेनी, फिर दूसरा लेके ले जाना, बस ऐसे होता था। फट्टी भी उस पे गाचनी मारते थे, फिर उसको साफ करके दोबारा फिर लिखते थे। तो मास्टर जी को यही कहा करते थे, भाई अच्छी तरह खुशखत करके लिखो। खुशखत आप समझते हैं? खुशखत मीन्स खूबसूरत।
2: अच्छा। तो ये जो खूबसूरती से लिखने की कला है, इसी ने आपके मतलब की और कला को और आगे निखार दिया होगा मुझे लगता है।
1: नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं।
2: उस टाइम मार बहुत पिटती,

0: ये मास्टर जी वगैरह उस टाइम तो बड़े सख्त होते थे, आजकल के तो जैसे नहीं कि आप हाथ भी नहीं उठा सकते।
1: उस वक्त के जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे माँ बाप ने कभी हमें पूछा नहीं था, स्कूल चले जाते थे ते आ जाते थे, वो अपने काम में लगे रहते थे। आजकल तो माँ बाप बच्चे के पीछे लगे रहते हैं सवेरे से शाम तक, लिया किताबें, लिया बस्ता, लिया, हमें नहीं कभी भी ना किताबें पूछी ना बस्ता पूछा, जो स्कूल में पढ़े है पढ़ लिया बस।
0: और उसके बाद जब भारत पाक विभाजन हुआ सर, तो आपका पूरा परिवार चंडीगढ़ आके बसा, तो कैसा था वो दौर, कुछ याद है आपको?
1: चंडीगढ़ तो नहीं बस

वादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं राजुल, और शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए इस गीत से। बागी फिल्म का गीत है, हसरत जयपुरी के बोल है, चित्रगुप्त का संगीत है।

कहिए भूले बेकरार नजर करूं।

आशा भोसले का गाया हुआ भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का ही लिखा और चित्रगुप्त की संगीत निर्देशन में सुहाग सिंदूर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज है।

0: आप सुन रहे थे बारात फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और गीता दत्त के युगल स्वरों में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं, क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
1: और हम सुनवाते थे

0: फंसा रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मन चाहे गीत कार्यक्रम, विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मन चाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको जो गाना सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है किंग कॉन्ग फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, धुन चित्रगुप्त की है।

0: और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती है।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखी ही नहीं सखा भी सुनते हैं। सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुनीली धड़कन विविध भारती से। आइए अब सुनते हैं सात समंदर पार फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में। शब्द रचना फारूक कैसर की है और सुर में पिरोया है चित्रगुप्त ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया।

नचेना पल पल छिन छिन पड़े नचेना बाप तक थक थक देने ना पल पल छिन छिन पड़े नचेना जमुना कट पे बंसी बट में प्रेम गंग पे तू भी राधा बोली हाय बोली क्या बोली।

0: 你后边开心呀，好的好的唱唱唱唱唱唱唱唱唱。तेल मालिश बूट पॉलिश फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। प्रेम धवन का लिखा, चित्रगुप्त का संगीत पथ किया हुआ। आवाजें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा

0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब दू जिसने मुझे इतने चुनौ से इन चीजों को संवारने और सहकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
0: मेरे पास जाने की उड़ान नौकरी, उस परिंदे में जाने की, और जो जीजी म्यूजिक के साथ शुरू हुआ, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे।

यादव की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं नवरात्रि फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। जी एस नेपाली के लिखे गीत को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीत बद किया हुआ सैमसन फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। और अब सुनवा रहे हैं हम मतवाले नौजवान फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज है, जोड़ी है मजरू सुल्तानपुरी और चित्रगुप्त की।

ये जुबान ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में गाना आपने सुना। प्रेम धवन के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं कल हमारा है, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

आसमान का प्यार आए मेरी बारी बोल जाए कहीं देखे जो एक धक्का घर से तो कट चुका फटका अलविदा ओ मेरे लिए अब एक है पंख

प्यार की बाजी इस फिल्म का गाना आपने सुना गीता दत्त और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। इन दीवर के लिखे गीत को संगीत से सवारा था चित्रगुप्त ने। और अब सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत अली बाबा 40 चोर फिल्म से। आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों में सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे। जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
0: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
1: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
0: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: मेरे अखियां रूहानी कहीं, मेरे चेहरा नूरानी कहीं।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाए,
0: चले आए आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172,
1: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार शाम को भी प्रसारित होंगे, शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर।

1:30 पर कार्यक्रम होगा सुहिला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी सुनिए 2:00। 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे। आपके फरमाइशी फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत होगा 3:00। नाट्यधर्म कार्यक्रम में बाद में 3:30 पर नाटक पोस्टमैन का दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। आज इस कार्यक्रम में निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग पेश किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे होगा शाम 5:20 पर। कार्यक्रम स्टॉप लगने सुनिए शाम 5:30 पर।

एफएम अमृत बाणी होगा शाम 6:30 पर। शाम 7 बजे विशेष जयमाला के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम सैनिकों की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम में आज महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल कुशल चंद्र की शौर्य गाथा पेश की जाएगी। कुछ खबर दिखे थे आपको सुनाएंगे रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। हवामहल कार्यक्रम में रात 8 बजे हास्य नाटिका यात्रा प्यारे लाल की, लेखक हैं कल्पनाथ सिंह, निर्देशक चंद्र प्रभा भटनागर। कार्यक्रम चित्रलोक होगा रात 8:15। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित रहेगा।

0: 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा में नगर निकाय का आम चुनाव और पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्वक जारी है। पंचकुला, अंबाला, सोनीपत और अन्य कई स्थानों से मिली जानकारी के अनुसार मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। पंचकुला नगर निगम चुनाव के लिए मतदान को लेकर सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सभी 204 मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मतदाता अपना वोट देने आ रहे हैं। पंचकुला नगर निगम के क्षेत्र में आज कुल 2,07,379 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1,535 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वोट देने आई कांग्रेस प्रत्याशी सुधा भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, जनता का जो फैसला होगा वह मंजूर होगा। वहीं पंचकुला भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी श्यामलाल बंसल ने भी पंचकुला वासियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि मतदाता सही फैसला करेंगे। सोनीपत नगर निगम के महापौर और 22 वार्ड से नगर निगम

बस्सी के चुनाव के लिए भी लोग उत्साह से मतदान कर रहे हैं। सोनीपत नगर निगम चुनाव के लिए महापौर पद के लिए भाजपा प्रत्याशी पूर्व महापौर राजीव जैन ने अपनी पत्नी पूर्व मंत्री कविता जैन बेटे दीवान के साथ मतदान किया। वहीं कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी कमल दीवान ने अपनी पत्नी मेघा दीवान के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सभी प्रत्याशी मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान करने की अपील कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। अम्बाला में भी लोग लगातार अपने मतदान के मौखिक अधिकार को उत्साह के साथ प्रयोग कर रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक अम्बाला में 25% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। अपना वोट देने आए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि वोट सबका संवैधानिक अधिकार है, अपने इस अधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान केंद्रों पर आकर लोकतंत्र के इस पर्व में वोट डालकर भागीदारी करने की अपील की। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कल पवित्र ब्रज 84 कोस यात्रा के पलवल जिले में पड़ने वाले विभिन्न मार्ग

0: सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि वोट सबका संवैधानिक अधिकार है, अपने इस अधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान केंद्रों पर आकर लोकतंत्र के इस पर्व में वोट डालकर भागीदारी करने की अपील की। उपायुक्त डॉ हरीश कुमार वशिष्ठ ने कल पवित्र ब्रज 84 कोस यात्रा के पलवल जिले में पड़ने वाले विभिन्न मार्गों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए वाटर कूलर का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल व अन्य अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि 17 मई को शुरू होने वाली इस यात्रा में श्रद्धालुओं को पलवल जिले से गुजरते समय कोई असुविधा न हो, इसलिए यह निरीक्षण किया गया है।
1: हरियाणा सरकार का आदेश है कि इस यात्रा में किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी कमियां हैं रास्ते में, कहीं गड्ढे हैं, कहीं सफाई की जरूरत है, उसको दुरुस्त किया जा सके, ये यात्रा बहुत अच्छे से हो, सुचारू ढंग से ले और कोई भी एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए हमने निरीक्षण किया है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए।
0: वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर कल भिवानी के महाराणा प्रताप चौक गेट पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता नेत्रपाल भिवानी एवं उनके साथियों ने किया। सबसे पहले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर विधायक घनश्याम सर्राफ व आयोजकों ने कहा कि महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा नहीं बल्कि राष्ट्र स्वाभिमान के प्रतीक हैं, जिनकी वीर गाथा सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। जींद के उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कल 11 मई को जयंती देवी मंदिर में जिला स्तरीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन होगा। इस दौरान धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत गुजरात के सोमनाथ में आयोजित राष्ट्रीय समारोह से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लाइव संबोधन भी प्रसारित किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि स्थानीय शिव चौक से जयंती देवी तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए भी भजन कीर्तन, ओंकार जाप और शिव तांडव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। पलवल पुलिस की अपराध जांच शाखा ने कल अवैध देसी कट्टा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच अधिकारी जगमिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान पलवल के गांव बिडोकी निवासी राहुल के तौर पर हुई है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: Miles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Miles से मुक्ति पाएं।
1: तीखा कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल जो किया जाता है फर्स्ट क्वालिटी सरसों से तैयार और जिससे हो जाएगा आपको प्यार। अभी ऑर्डर करें www.tikharrenterprises.com पर।
2: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं।

video oggi dove c'è il basement dove c'è il tuo rap di chi fuori il health show caricron mi sono arrivato a bacciare per te neopia mi sono scegliendo professor dottor Jaspreet Sukheja metro di Dwan Vibhag BGH Chandigarh दूरदर्शन हरियाणा पर 3:30 पर कार्यक्रम होगा हरियाणा डायरी साप्ताहिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक खबरों की सुर्खियां शाम 4:30 पर कार्यक्रम होगा चंडीगढ़ दर्पण जनों मुद्दों पर आधारित ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं दूरदर्शन हरियाणा पर आज शाम 4:30 पर शाम 5 बजे का

0: या पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: गली गली आवाज जावे, हर घर अपनी गिनती करावे, मिलके लिखोगे कल दा नवा अध्याय, साडी जनगणना साडा विकास।
2: जनगणना दे पहले पड़ाव विच हाउस लिस्टिंग अते हाउसिंग सेंसस

0: Chanda Vikas.
1: हाँ, वो आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

0: रहा।
1: सिलसिला फिल्म के संगीत निर्देशक का नाम शिव हरि बताया हमारे साथियों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और घड़ी की भी कई सारी बातें हैं। एक श्लोका कह रही है कि तब घड़ी की वैल्यू उतनी थी जितनी आज मोबाइल की है। एक और संदेश है, आजकल की तमाम डिजिटल तथा खूबसूरत घड़ियों के रहते हुए भी मुझे अब भी वही घड़ी अच्छी लगती है जो बचपन में पहली बार देखी थी। पेंडुलम वाली बड़ी सी लकड़ी की घड़ी और जिसमें हर संडे को मेरे चाचा जी चाबी दिया करते थे। बाबा के जाने के बाद बहुत साल तक मैंने उसे मेंटेन रखा, लेकिन बाद में वो खत्म हो गई। एक और श्रोता बता रहे हैं, कितनी भी महंगी मोबाइल हाथ में ले लीजिए पर घड़ी पहनने का एक अलग ही अंदाज होता है। एक और श्रोता ने जानकारी दी है कि जर्मन की ताला बनाने वाले पीटर हनीम ने सबसे पहले 1505 में घड़ी बना ली थी। क्या बात है। एक और संदेश है कि हमारे विवाह में लेडीज घड़ी और जेंट्स घड़ी दोनों मिली थी, ज्यादा समय तक संभाल नहीं सके, खराब हो गई। एक और संदेश है, समय बड़ा कीमती है, समय का अपना महत्व है। नाना जी ने घड़ी देखना सिखाया था कि घड़ी की बड़ी सुई जिस पर हो उसको 5 से गुणा कर दो, छोटी सुई जिस पर हो उतने बचकर उतने मिनट। और एक और संदेश में गुजराती की एक कहावत है, माते माँ बीजा बागला नावा, मतलब में आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना है जितना रेगिस्तान में हवा का। कुछ शायद छूट गया है इस कहावत में, या जो अर्थ इन्होंने लिखा है उसमें कुछ छूटा है। अगर मैं सही हूं तो सही अर्थ के साथ एक बार फिर से अपना जवाब लिख दीजिए कृपया। और एक श्रोता कह रही है कि समय का वक्त का वाकई बहुत बलवान है, समय कब कौन सा रंग बदलेगा कोई नहीं जानता। और आज चलते हैं सुरीले सफर पर, मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी हैं। समय कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता मुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। इंसान जीना है, इस पल को जी ले क्योंकि इस वक्त को अगले पल तक न रोक पाऊंगा। अभी भी वक्त है समझ लो, कीमत पैसों की नहीं समय की करो, फिर आपकी कीमत वक्त तय करेगा। क्या बात है। और बड़ा प्यारा सा संदेश, अम्मा तो बूंद की तरह होती है जो दिखती तो नहीं है पर जोड़ती सबको है, ब्रह्मांड की सभी माँ के लिए प्यार और आशीर्वाद का इमोजी बनाकर भेजा है भाई। हाँ सच में सारी ब्रह्मांड की माओ के लिए ढेर सारा प्यार दुलार। और अब अगला शब्द आ रहा है पायल पर, तो देखिए जरा ये गाना सुनिए और बताइए कि किस फिल्म का है। और हाँ हम आपको बता दें कि जो अभी हमने गाना सुना था वो डॉक्टर फिल्म से था। आवाज के बारे में हमने पूछा था कि किसकी आवाज है, अभी उस जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। ये गाना सुनिए।

उनका नाम मेरे लाल लता मंगेशकर की आवाज, मजनू सुल्तानपुरी के का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी ने घड़े की बात भी की है और माँ के बारे में भी बात की है। एक श्रोता कह रहे हैं कि माँ की कदर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है, वो किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। पंकज मलिक साहब का नाम बताया हमारे सभी साथियों ने, कुछ ने वैसे KL सहगल जी का भी नाम लिया है, लेकिन ये गीत जो डॉक्टर फिल्म का हमने आपको सुनाया था वो पंकज मलिक के स्वर में था। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोबाइल में घड़ी आने के बाद लगभग सभी प्रकार की घड़ियां विलुप्त सी हो गई हैं। और एक ने संदेश में कहा है कि जब मैं बैंक में जाता था तब दीवार पर घड़ी टंगी घड़ी को 15 मिनट आगे रखता था ताकि देर ना हो और वक्त पर पहुंच जाऊं। एक और श्रोता का संदेश है कि कुछ घड़ियों में तो केवल डॉट होते हैं, नंबर होते ही नहीं, दिमाग घूम जाता है अभी भी उसको देखकर। अपनी पहली घड़ी अपने स्कॉलरशिप के पैसों से खरीदी थी, हमारी एक साथी ने बताया। वाह क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि खराब घड़ी भी सही समय बताती है। जी हाँ, दिन में दो बार, बताइए कब कब। और एक श्रोता ने कहा है कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी घड़ियां आ गई हैं, न्यू जनरेशन को बहुत अच्छी लगती है, पर मुझे छोटी नाजुक सी घड़ी अच्छी लगती है। मॉर्निंग वॉक के लिए सिर्फ स्टेप गिनने के लिए मैं पहनती हूँ। घर पर होते हैं तो दीवार पर लगी घड़ी, बाहर जाते हैं तो रिस्ट वॉच जो पति देव ने खरीद कर दी है। क्या बात है। दुनिया में माँ वो शब्द है जिसमें पूरी कायनात सिमटी हुई है। माँ का प्यार निस्वार्थ और असीम होता है, जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। हर साल माँ के बलिदान, त्याग और समर्पण के लिए मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम सभी अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्यार जाहिर करते हैं। वैसे एक दिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस दिन हम उन्हें महसूस करा सकते हैं कि वे हमारे लिए जीवन में कितनी अनमोल है।

समय का सुनहर पर बदलता रहता है, कभी उसमें ख्वाबों की मिठास होती है, कभी वीरानियों की सिसकी, कभी मिलन की बहार झनकती है, तो कभी तन्हाई की गूंज। उसके गीतों में माँ की लोरी भी और जीवन का सबक भी। बचपन की वो शरारती याद है, जब छुपाई हुई टेस्ट कॉपी अचानक सफाई में मिल जाती या डिनर से पहले किचन में हमारी चोरी पकड़ी जाती, तब अचानक हवा में तैरती चप्पल रिमोट या गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता वो बेलन प्रकट हो जाता था। हमें सही गलत का फर्क समझाने की उनकी अपनी एक अनूठी भाषा थी। शायद वही हमारा पहला सबक था कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है। माँ का वो निशाना कभी खाली नहीं गया, चाहे वो शरारत रोकना हो या हमें सही रास्ते पर रखने की उनकी जिद। उन्होंने हमें अनुशासन की उस आग में तपाया ताकि हम कुंदन बन सके। आज हमारी हर कामयाबी और हमारा संभाला हुआ चरित्र दरअसल उनकी उल्टी हुई नसीहतों की देन है। उस सख्त प्यार को नमन जिसने आज हमें आसमान छूने के काबिल बनाया। क्या बात है। और इसी बात पर कार्यक्रम का अगला गाना बताइए किस फिल्म का है और आवाज किन की है।

बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। तलाश फिल्म का गीत, सचिन देव का संगीत निर्देशन, उन्हीं की आवाज में गीत आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। एक श्रोता लिखते हैं कि माँ शब्द एक छोटा सा भला ही हो, माँ वो इमारत है, वो पेड़ है जिसकी छांव में बैठकर दुनिया के सारे सुकून मिलते हैं। भगवान हर जगह

0: नहीं रह सकता, इसीलिए माँ आज मेरी माँ को दुनिया से गए 5 साल हो गए, लेकिन उनका एहसास आज तक मेरे साथ है, उसे मैं हर जगह महसूस करती हूँ। घड़ी के बारे में भी बहुत सारे संदेश हैं। मेरे पिताजी की शादी में मिली हुई घड़ी अभी तक मेरे पास चालू हालत में मौजूद है। वाह, सप्ताह में एक दिन निकालकर चाबी भर के रख देता हूँ, क्या बात है। गुजराती की कहावत के लिए हमने कहा था कि एक बार फिर से भेज दें, बिल्कुल भेजा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। माते मां वीजा बगड़ा नावा, मतलब माँ के आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना ही है जितना रेगिस्तान में हवा का। तो सोचिए भाई, रेगिस्तान में हवा का क्या महत्व है। एक संदेश में कहा है कि जब बच्चे छोटे थे तो मैं सभी घड़ियों को 10 मिनट बढ़ा कर रखती थी, आजकल इसे 5 मिनट कर दिया है, क्या बात है। और माँ को लेकर भी बड़ा एक दिल को छूने वाला संदेश है, लिखा है कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या नहीं, पर संसार का दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ से ही प्राप्त होता है, माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है। आगे लिखते हैं कि मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों में बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, क्या बात है। दिल को छूने वाला संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: गली गली आवाज जावे, हर घर अपनी गिनती करावे, मिलके लिखोगे कल का नवा अध्याय, साथी जनग

अभी हमें जवाब तो नहीं मिला है, चलिए देखते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर क्या क्या जवाब आने वाले हैं। एक बड़ा ही मार्मिक संदेश मिला है। हमारे यहाँ जबलपुर में बरगी डैम में अभी कुछ दिन पहले क्रूज पानी में डूब गया था, जिसमें एक मां ने अपने बेटे को आंचल में इस तरह से लपेटा हुआ था कि वो मरने के बाद भी छूटा नहीं था। इस दुर्घटना में मां बेटे दोनों नहीं बच पाए। ऐसी ही होती है माँ, बस अपनी धड़कनों को अंतिम समय तक अपने लाडले या लाडली को देने के लिए उत्सुक, सिर्फ वही एक रिश्ता प्यारा सा। घड़ी को लेकर संदेश आया है कि शादी के समय फोटोग्राफर ने मुझसे सवाल किया, घड़ी का वो समय बताएं जब घंटे और मिनट का कांटा एक दूसरे पर हो और बजे भी उतने ही मिनट हो। तो उत्तर है 15:15 या 3:15 या 3:15 घड़ी मिनट दोनों कांटे एक सीध में होंगे। क्या बात है, ये जवाब आपने फोटोग्राफर को बता दिया था या नहीं? मेरी दुनिया है माँ तलाश फिल्म का जो गाना था, उसके लिए कई श्रोताओं की बात आई है कि ये तो मेरी भी पसंद थी, और एक श्रोता ने कहा है कि मैंने एक ही पसंद लिखी थी वो स्वीकार हो गई, तो धन्यवाद का है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

रंग एम्बुलर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, नीरज के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। ये था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना जो कि झलक के रूप में आपने सुना। और अब इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का वक्त आ गया है। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारत।

मित्रों, किसी भी बच्चे का संसार से पहला परिचय होता है उसकी माँ, जिसकी ममता एक बच्चे के जीवन की सबसे बड़ी धरोहर होती है। माँ और उसके बच्चे का नाता सिर्फ जन्म का ही नहीं, सांसों का नाता होता है। एक बच्चा अपनी पहली सांस माँ की कोख में ही लेता है और तभी से उसके जीवन की डोर ममतामयी माँ से बंध जाती है। जाने कितने दर्द सहती है वो माँ जिसकी कोख में पलने वाला बच्चा जैसे ही दुनिया में आता है उसे देखते ही अपने सारे दर्द भूल जाती है माँ और चमकती आंखों से प्यार छलकाती मुस्कुराती अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा लेती है। छलक पड़ते हैं खुशी के आंसू उस माँ की आंखों से जो स्वयं ममता का अथाह सागर है। उसकी कोख से जन्मा बच्चा उसकी जिंदगी को खुशियों और उल्लास से भर देता है।

मानवता का अमृत रस बरसाता माँ का आंचल संपूर्ण जगत को स्वयं में समेटने की ताकत रखता है और माँ के आंचल की छत्रछाया में जीवन बिताने की कामना हर कोई करता है। बच्चे की खुशियां, जरूरतें, उसकी आशाओं और अरमानों को पूरा करने में अपना सारा जीवन बिता देती है माँ। बच्चे की गलतियां हो या भटकाव, बहुत प्यार से उसे वो राह दिखाती है जो बच्चे के जीवन में बेशकीमती और सुखदायी होती है। माँ अनमोल है, अतुलनीय है, जिसका हर एक बच्चा उसकी आंखों का वो तारा होता है, जिसकी एक मुस्कुराहट से उसकी सुबह होती है, जिसके लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। बच्चे के मुंह से निकला पहला शब्द होता है माँ, जिसे सुनकर दुनिया की हर माँ निहाल हो जाती है और अपने आंचल में समेट लेती है अपने

की ममता निस्वार्थ है। बच्चे के लिए सुख की वो छाया है माँ, जिसके तले बच्चा स्वयं को सदैव सुरक्षित महसूस करता है। हर बच्चे को माँ की ममता का वो आंचल नसीब हो जिसकी छत्र छाया में उसका मासूम बचपन खिलखिला उठे और संगीत के सुरों की तरह रस बरसाता आगे और आगे बढ़ता ही जाए। नई उम्मीदी में भी उम्मीद का दिया जलाने वाली माँ और उसकी ममता के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। ममत्व का गहरा समंदर है माँ का आंचल, जिसका आशीर्वाद जटिल से जटिल समस्याओं को भी सुलझाने की ताकत रखता है। माँ अतुलनीय है, पूजनीय है। इस धरती पर ईश्वर का रूप है।

जगत में हर बच्चे के साथ उसकी माँ का आंचल हो, ममता हो, दुलार हो, इन्हीं कामनाओं के साथ अब संपन्न होती है आज की त्रिवेणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन के रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामान्य

0: सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
0: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है। इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलनाडु के नेत्री कड़गम, टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जे अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सिल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरकुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोक भवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी

0: खानापारा स्थित वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाई देगी। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित है, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी है। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कार्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष की भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडीवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
3: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज

0: दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
1: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुनते हैं कालजयी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

की ममता भरी गोद का कोई अनमोल है और उसका कोई सानी नहीं है। जागृति फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में, प्रदीप के बोलों को संगीत में ढाला था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म लाजवंती का ये गाना।

0: मिले हम धूम से बैठे मिलते हैं शबनम, तुम है हमारे हम है तुम्हारे, कैसे न मिलते चांद सितारे।
1: बाप हमें हमारी प्रेरणा तुमसे पढ़ा है ये क्यों मिला?
0: अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये तुमने क्या पूछा, जो तुम्हें खुद पर मिलता है वो है सबसे।

अपना माजी उत्पाद बताना, खुद कुछ कहना, कुछ न छुपाना। हम तो तुम्हें हर रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत गाते, और कभी तो तुम ना आए।

0: नदी नदी तो आओ ये गुड़िया है कौन बताओ तुक तुक उनको ताप रही है बैठी क्या ताप रही है
1: हाँ हाँ हाँ हाँ ना ना यूँ ताना मत

0: आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों का गाया हुआ लाजवंती फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल को किसी को दे, एक मासूम सा

0: रंगमंच पे कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: जो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब दी जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को हमार दे और सरकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
0: मेरे पास जाने की उड़ान नौकरी, उस पर इंडिया में जाने की, और जो जिजी म्यूजिक के साथ शुरू हुआ, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई

सदाबहार नवीन प्रोग्राम की अगली पेशकश टैक्सी स्टैंड फिल्म से है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। बोल मजनू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। और अब एक मीठा सा नगमा चंदन फिल्म से सुनते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ।

ऑटोमेटिक टेलीफोन, हर 24 घंटे जाके उसकी आँख कभी ना लागे। होशियार खबरदार, बच के रहना, देख रहा है सब कुछ।

मोहम्मद रफी का गाया, औलाद फिल्म का ये गाना बहार लेकर आया। शब्दों की मोती पिरोए मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन की खुशबू बिखेरी चित्रगुप्त ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना।

से प्यारा ये गीत इशारा कर रहा है मोहर फिल्म का कि आज के कार्यक्रम की यही है अंतिम प्रस्तुति। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आपने सुना ये गाना। राजेंद्र कृष्ण की रचना को संगीत में पिरोया मदन मोहन ने। तो अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। अगला कार्यक्रम मन चाहे गीत बस थोड़ी देर।

चाहे गी मन चाहे गी मन चाहे गी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखे, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखे, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड न भेजें, अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें।
0: और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है? कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
0: पोस्ट बॉक्स नंबर 19,750, मुंबई 400

के गुलदस्ते सजाए आपका चहेता प्रोग्राम मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी को सादर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत करें तो हम

बड़ा ही प्यारा सा गीत चुना है हमारी पहली पेशकश के रूप में हमारे इन सभी साथियों ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, दिघत अब्बासी और शहनबाज अब्बासी, आप सभी सुनना चाहते हैं आए दिन बहार की फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपने सुना आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत ने पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वाकई एक खत में क्या क्या समाया होता है, प्यार, इकरार, इंतजार और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। लव इन टोक्यो फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन। इस गाने को सुनना चाहते हैं जयपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और रिफाकत, वरुण जरूरका से महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे और मिलिंद सरकटे। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर लव इन टोक्यो फिल्म का ये गाना।

समागम टोकियो का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश ने छू लिया है मन को। याराना फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसे सुनना चाहते हैं नोहा टाउन राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंडा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल, राजेश रोशन की धुन, अरे प्यारा सा नगमा।

जीवन का मौसम बदल जाता है जब कोई हौले से आकर दिल छू जाता है। अब दिल छूते ही क्या होता है, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत करीब आती है। जो आ रही है इस गीत के साथ आंखें फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत रचना रवि की है।

जाएगी प्रोग्राम का आखिरी नगमा बना है जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेचा और पूनम गगनेचा की पसंद का फिल्म आशा का ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना।

आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: वाणी का प्रसारण है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति, हिंदी अनुवादक पीएस कृष्णा स्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।
1: जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाते हो तो मुझे बेहद सुख मिलता है बेटे। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ।
2: कहीं माँ जी।
1: ये बात किसी को मालूम ना हो, इस रहस्य को तुम प्रकट ना होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको ये रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ।
2: बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुँचेगी।
1: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी, करोगे ना?
2: माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपका साया।
1: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा, ये लड़की नीमा।
2: जी, आप कहते कहते रुक क्यों गई, कहीं ना।
1: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ। अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं, तो तुम उन दोनों की शादी करा देना। करा दोगे ना?
2: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
1: मेरी बात याद रखोगे ना?
2: जी।

0: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
1: हाँ भैया शिंगारम, बात बहुत बड़ी है। अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो।
0: लखपति? अरे क्या कह रहा?
1: ये जरा गंभीर मामला है।
0: तो?
1: देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
0: लगता है हमारी दूर दारू फिकर आया है। अब सच कह दे नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते की मौत पड़ेगा तू। अरे 10 लाख रुपया है कहाँ, और उसके साथ उस डाकिया का क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है।

0: वही 10 लाख रुपए हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा।
1: क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा?
0: तुमने कहा था ना मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की ओर चक्कर लगाया करूँ।
1: उसी
0: के मुताबिक मैं वहाँ गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था। मैं छिप कर खिड़की के पास खड़ा हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
1: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने यह भी बताया था कि उसने धन कहाँ गाड़ रखा?
0: वही तो मैं सुन नहीं पाया। उस वक्त पास से दन दनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन के आगे की बात नहीं सुन पाया।
1: जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन? और
0: नहीं भैया नहीं, फोन करके जेल जाने से क्या फायदा? अब कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
1: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहते हैं। और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है। दोस्त, इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे तो कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है।

0: स्वामी मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
1: क्यों, क्या बात है पोस्टमास्टर साहब, आपके चेहरे क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है।
0: क्यों किया जाए कंद स्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुले सा, एक न एक दिन सब यहाँ से जाएंगे ही। लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है।
1: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
0: क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तब्धित रह गया था।
1: तार? कैसा तार?
0: लो, तुम खुद ही पढ़ लो ये तार, इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे।
1: ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था।

0: आ जाए। ये डॉक्टर ही ऐसी है। उठो जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया को ले आओ। हम तो बेचारी रोज अपनी बेटी की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है।
1: चाहता हूँ बाबूजी, कैसी मजबूरी है। शिव कामी अम्मा मुझ पर माँ के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी।

0: माँ जी
1: आओ कंद स्वामी, आओ आओ, तुम्हारे ही राह देख रही थी। अरे दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ ना। आज सवेरे सवेरे ही आ गए, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या?
0: ड्यूटी? ड्यूटी आपका तार है माँ जी।
1: क्या कहा, तार? मेरा तार आया है?
0: जी हाँ, सीमा रक्षा के मोर्चे से है।
1: अरे तो क्या मेरे कुमार स्वामी का तार है?
0: जी हाँ, यहाँ दस्तखत कीजिए।
1: अभी करती हूँ। तार का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, लेकिन मैं यूं ही घबराने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है?
0: नहीं तो
1: ये क्या, तार मेरे हाथ में दे दिया? मुझे तो सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, और फिर ये तार तो अंग्रेजी में है। बेटा तुम ही पढ़कर इसका मतलब बता दो। इस महीने कुमार स्वामी का न कोई खत आया और न कोई मनी ऑर्डर ही आया, कहीं वो छुट्टी लेकर यहाँ आने का ही समाचार होगा। भला तार देने की क्या जरूरत थी, पागल कहीं का।
0: माँ जी बात यह है कि।
1: अरे बताओ ना, तार में क्या लिखा है, तार को इस तरह घूम क्यों रहे हो?
0: माँ जी तार में कुमार स्वामी ने लिखा है, लिखा है कि वो आज गांव पहुंचेगा, उसे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है।
1: अरे तो क्या मेरा बेटा आज आ रहा है? मेरा अनुमान ठीक निकला। अरे बेटा तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों?
0: कुछ नहीं माँ जी, यही आंखों में कुछ धूल पड़ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
1: तो चले क्या? अच्छा कल अपना काम खत्म करके यहाँ जरूर आना, कुमार स्वामी से तुम्हारी जान पहचान करा दूंगी, खाना भी यही खाना। अच्छा
0: अच्छा।

0: अरे ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कुमार स्वामी के देहांत के समाचार को बदलकर झूठ मूठ कह दिया कि वो आज आ रहा है।
1: और क्या कहता, शिव कामी अम्माल की हालत देखकर मुझे ये झूठ बोलना पड़ा।
0: तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
1: हाँ हाँ, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन इस बार, केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा।
0: झूठा अभिनय? तो क्या तुम झूठी खबर को सब साबित करने के लिए कुमार स्वामी का स्वांग भरोगे? ये जुर्म है, सोच लो। ऐसे स्वांग का क्या नतीजा होगा?
1: नतीजा? एक बुढ़िया बीमार मां के हृदय को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मैंने सब सोच लिया है। वर्दी, मुझे और घर पर बस्सा और फौजी ले जा, मुझे देर नहीं करनी चाहिए।

0: माँ
1: कौन है? अरे आप नानी, नानी देखो कौन आए हैं लड़के से।
0: हेलो नीना, हाउ डू यू डू? दो साल में तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ कहाँ है? अरे अंदर कमरे में लेटी है। क्या हुआ माँ को? माँ
1: कौन? कुमार स्वामी आओ मेरे बेटे, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही।
0: मुझे क्यों नहीं लिखा माँ? अच्छी से अच्छी दवा खरीद कर भेज देता।
1: बेकार ही तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती, मामूली खांसी बुखार है। तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो?
0: मुझे पहचान लिया है क्या? ये कैसा सवाल कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ।
1: कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा।
0: माँ तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो?
1: मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ।
0: कंद स्वामी कौन?
1: अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार।

0: तुम्हारे यहाँ न होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ।
1: क्या कह रही हो माँ, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या?
0: बेटा, तुम्हें और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला, तुम जरा बाहर जाकर देखाओ कि कंद स्वामी आ रहा है या नहीं।
2: नानी ना, आज कोई नया डाकिया आया है, उसने बताया कि कंद स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा, सो वे छुट्टी लेकर गाँव गए हैं, कल रात वापस आएंगे।
0: कंद स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला, जाकर पानी गर्म करो, कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर ले, एक ही दिन तो यहाँ ठहरे का बचा है।

0: स्वामी है ना, कल उसने बहुत बड़ा छल किया।
1: छल? कैसा छल?
0: अब कल उसने गांव जाने के बहाने डाकखाने से छुट्टी ली और इधर उधर चला गया।
1: फिर?
0: अब फिर उसने फौजी वर्दी पहनकर मूछें और मस्सा लगाकर तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का सांग भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर।
2: उसकी ये हिम्मत!
0: अरे भैया आगे तो सुनो, तुम्हारी बहन की आंखों में उसने ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया।
1: सच कह रहा है तू?
0: हाँ भैया, तुम्हीं तो कहा था कि अगर कंद स्वामी की मूछें और मस्सा हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब से साबित कर दिया है।
2: अरे तो इसका मतलब है कि नीला ने भी उस पर विश्वास किया होगा। नीला ने उससे हंस हंस कर बातें की होगी उसके साथ।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये खेल आगे भी जारी रहा तो समझ लो एक दिन में डाकिया फिर भेष बदल कर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी नीला से शादी करके चंपत हो जाएगा।
2: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मारी, जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकिया का खेल आगे न बढ़े।
0: आज से मैं रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। कंदू स्वामी जब फिर फौजी वर्दी पहनकर आएगा तो मैं फौरन आकर तुमसे कह दूंगा, तुम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना।
2: वाह, बहुत बढ़िया उपाय है ये।

0: गुली गुली।
1: ओह डैम इट, इस गांव के स्टेशन पर कोई गुली भी नहीं, सामान खुद ही उठाना होगा।
2: अच्छा तो ये साला डाके आज फिर भेष बदल कर आया है, अभी खबर देता हूँ श्रृंगारम को।

0: Mom? Mother? Mummy? Where are you? Oh, silly old lady.
1: आइए आइए बाबू साहब, आज फिर
0: कौन? नीला? क्योरी छोकरी कैसी है? माँ कहाँ है?
1: वो आज फिर डॉक्टर के यहाँ गई है, लेकिन मैं पूछती हूँ आज फिर क्या सोम भरा है? उस दिन जैसे नानी ने धोखा खा गई थी, वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ।
0: What nonsense! ये क्या कह रही हो?
1: बस बस बंद कीजिए नाटक, मुझे सब मालूम है। जल्दी से ये बनावटी मुझे और मसा उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा मैं खुद उखाड़े देती हूँ।
0: ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ मेरी, मुझे दर्द हो रहा है। ये बनावटी नहीं, असली मुझे है। हट जा सामने से। कहाँ है मेरी माँ?
1: कहाँ ना, वो डॉक्टर के यहाँ।
2: अरे ये क्या मामा की रट लगा रखी है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है? डाकिया कहीं का, कौन है तेरी माँ?
0: कौन? ओह सिंगाराम। हेलो, हाउ डू यू डू? यू सिली कंट्री ब्रूट, आई मीन अंकल।
2: अंग्रेजी के चार शब्द बोलने से क्या होता है? क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचान?

0: चोर उचक्का कहीं का?
1: अंकल ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं चोर उचक्का हूँ?
0: हाँ हाँ, डाक खाने से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूछे और मस्सा लगाकर तू मेरी बुढ़िया बहन को धोखा दे सकता है, इस ना समझ नीला को धोखा दे सकता है, लेकिन तू इस शिंगारम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है, तूने उस तार का असली मजबूत अम्माल को नहीं बताया, उसके बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेष बनाकर चला आया। इस तरह आसानी से तूने शिवकाबी के जमीन में गड़े धन का पता लगा लिया। अब बोल कहाँ है वो धन, कहाँ जा रखा है तूने उसे? पहले ये बता दे, बाद में चाहे तू कुमार स्वामी की एक्टिंग कर चाहे कंद स्वामी की, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बोल बोल वो जमीन में गड़ा धन कहाँ है?
1: जमीन में गड़ा धन? अंकल सिंगाराम ये तुम क्या बेपर की उड़ा रहे हो?
0: चुपचाप अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे, नहीं तो
1: तू क्या करेगा बदमाश? चला जा यहां से, मैं किसी गड़े हुए धन के बारे में कुछ नहीं जानता। कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ पेट में डाल लूं।
0: अबे अंदर कहां जाता है, पहले बता।
1: नहीं बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम, हट जा मेरे सामने से।
0: अच्छा, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है तुझे? कुछ नहीं मालूम तो ले।

0: मुझे गलती हो गई और वो डाकिया कंदु स्वामी नहीं कुमार स्वामी ही था।
1: है
0: तुमने कुमार स्वामी को
1: कभी नहीं, तूने मुझे गलत खबर दे दी। कंदु स्वामी कहाँ है?
0: डाकखाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपने खून से लखपत कपड़े बदल डालो।
1: अच्छा मारी, तू भाग कर किसी को कंदु स्वामी के पास भेज, उसे कहला दे कि शिव का भी बहुत बीमार है, उसे फौरन बुलाया है। मैं तब तक पुलिस चौकी पहुंचता हूँ।
2: माजी
0: ये क्या, ये कौन खून से लखपत पड़ा है? अरे ये चाकू, हाँ तो इसे धीरे धीरे निकाल लो। हाँ अरे ये नीला क्यों बेहोश पड़ी है? ये सब क्या हुआ, किसने ये खून किया?
3: हाँ कंदु स्वामी, तुम्हारे हाथ में ये चाकू, ये खून कैसा बह रहा?

0: पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि आप सख्त बीमार हैं। मैं भाग आया और
1: पापी, मेरा सब नाश करके झूठ बोलता है। मैंने अपनी दौलत की बात तुझे इसलिए बताई थी कि तुम ईमानदारी से उसकी रक्षा करोगे।
0: आपको क्या जवाब दूं? मुझे कुछ भी तो नहीं सूझ रहा।
2: सब सूझ जाएगा कुंभस्वामी, हम आ गए हैं।
0: कौन? इंस्पेक्टर साहब।
2: हाँ, हम ठीक मौके पर पहुंचे। तुम वारदात की जगह पर रंगे हाथों पकड़े गए हो। सिपाहियों, इसे हथकड़ी लगाओ।

0: toca, Johnny.
1: Papi, estoy cruzado.
0: ¡Cabana, rea! ¡Ruquie!
2: Inspector Sahab, इसे श्रृंगार में मेरे मामा कुमार स्वामी की हत्या की थी, इसे नहीं चाकू होगा, तभी कन्न स्वामी यहाँ नहीं थे। अरे रोके, वो भाग रहा है।
0: सिपाहियों, ये बदमाश श्रृंगार में भाग नहीं पाए, पकड़ो। बेटी, तुमने क्या श्रृंगार को खून करते हुए देखा था?
2: जी हाँ, इसने कुमार स्वामी को कर्ण स्वामी समझ कर चाकू घोल दिया। दोनों की शक्ल मिलती है ना, मामा की हत्या होते देखकर मैं दहशत से बेहोश हो गई। बाद में जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती। कर्ण स्वामी ने कुछ नहीं किया, ये मेरा अपराध है। हत्या के समय ये यहाँ थे ही नहीं।
0: अच्छा, श्रृंगार में एक बेकसूर को फंसा कर खुद बचना चाहता है। सिपाहियों, पकड़ लाओ इसे, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। कंद स्वामी को छोड़ दो।
3: मेरा बेटा होश में आ रहा है, ये भी जिंदा है। बेटा, बेटा।
0: आप सब खामोश रहिए, ये कुछ कह रहे हैं।
4: इंस्पेक्टर साहब, लगता है मेरे पीछे यह कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं आज यहाँ छुट्टी पर आया था। यह श्रृंगार मुझे कंद स्वामी मानकर मुझसे किसी गड़े धन के बारे में पहले पूछताछ और फिर तकरार करने लगा। इसी ने मुझे चाकू मारकर घायल किया।
2: है तुम्हारे पास मेरे बच्चे।
4: तुम रोती क्यों माँ? मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका। मैंने हमेशा तुम परेशान ही

छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें देख लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तुम्हारी गोद में, तुम्हारे चरणों में मेरा अंत हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना

0: पोस्टमास्टर साहब। अच्छा किया जो आप इस गंद स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं। नीला देखो तो कौन आया है।
1: क्यों गंद स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे?
0: ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊं, उस दुष्ट शिंगारम ने ऐसी चाल चली कि
2: जो होना था सो हो गया। शिंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है।
3: पोस्ट मास्टर साहब, उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना शिंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐन मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरी गले में पड़ता। मैं तो बाल बाल बचा।
0: देखो गंद स्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
3: क्या कह रही हैं आप?
0: मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये न समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं।
3: मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
0: मैं क्यों माफ करूँ, तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा।
3: आप जो भी कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ।
0: हाँ, इसी में बुद्धिमानी है। पोस्टमास्टर साहब, आप गवाह है ना?
2: भाई मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ।
0: मैं कंद स्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस कंद स्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों कंद स्वामी, मंजूर है ना?
3: जी मैं, लेकिन आप नीला से भी पूछकर।
4: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारीक, चमलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: 1984 दुनिया
1: चांद नगर की शहजादी मैं जिस धरती का बंजा
0: 1985 जमाना
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए
0: क्या 1993 फिल्म

0: और प्रोड्यूसर, उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनाएंगे
0: जी,
1: वो पिक्चर अच्छी बने। और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रेल में पिक्चर बंद हो गई।
0: अरे बाप रे।
1: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
0: ये लो।
1: और मेरे पास राजेश करने के

0: हीरोइनों को भी देते हैं और ठहर गए। अब का दो तीन साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक दो तीन साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हुई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लगे थे, कार्टून पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच में दूसरी पिक्चरें मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया। और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर को दुनिया उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
1: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे, वहां
0: दिलीप कुमार साहब को हीरो है। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास डायरेक्ट करेंगे मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज्यादा पिक्चर में डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा चलता रहा, यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वजीर रहमान जी से प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना, देवानंद की भी, तो इसलिए वजीर जी को भी जानते सबको। तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
1: कनेक्शन
0: कनेक्शन सबके। तो वजीर जी से कहने लगे यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगाओ, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वजीर जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
1: अरे गजब,
0: रमेश तलवार से? वो तो यश कुमार असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर है, 2 पिक्चर जारी कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार मैं, हम सब ने किया है, शशि कपूर है पिक्चर में।

0: very good victim. That's how it are actually. Where's your name?
1: Kaha?
0: कि भाई आप हमने 5 दिन मिलने आना चाहता हूँ। मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था तभी उसको ऑफिस बना लिया था मैं। तो मेरे वो पाली हिल पे वहाँ पहले आए वहाँ पे तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि जिस जी के पास ये जाता रहा तो ऐसे ही अभी वैदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है तो आप मेरी पिक्चर

0: कि भाई वो ऐसा है कि जिस जी के पास ये जाता रहा, तो ऐसे ही अभी वैद्य जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई वैद्य जी की पिक्चर कैसे करूँ, मैं उनका चेला हूँ, तो मुझे टाइम दीजिए, मैं वैद्य जी से बात करता हूँ, एक दो दिन में उनसे बात कर लूंगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वैद्य जी से मैंने बात की कि ऐसा उन्होंने कहा अभी तक करो क्यों नहीं करो। ओहो, मैंने कहा वैद्य जी मैं आप कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी उम्र को जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूँगा। तो हम लोग कहानियां सुनने से शुरू, क्या होगा अभी ग्रेट पर लिए नहीं थे अभी हमें,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली कभी नहीं है बिटू में
1: सागर साहब भी गए थे,
0: कोई नहीं कुछ किसी को लिया नहीं था हमने।
1: अच्छा
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी,
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक रात की बात बताता हूँ, आप किसी ने कहेंगे ही नहीं, उनको बताइए मैं और सलीम साहब अलग हो रहे हैं। इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था, पूछता हूँ कि यहाँ एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे,
1: हाँ
0: वो रमन इप्टा के मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब
0: गाने लिख रहे थे, इससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: वैसे के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने

0: घर पे बाहरों की भी इजाजत में बाजा लेके आते हैं। और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा, हनी
0: तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उत्तर को ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इप्टा के लोग वहां पर बैठा करते थे। रमन, राकेश बेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहां जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो को पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था, खुद चले जाते थे। तो जावेद साहब ने जी अंदर ले गए, उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी ये ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जोहर की तरफ से, और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ और जो भी। तो मेरे भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जोहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है। सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए, डायरेक्टर भी लिखते हैं, तो बाकी देख लेंगे चीजें, अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जोहर की फिल्म में, दोस्ताना थी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना,
0: उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जोहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला। जैसे मुश्किल होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने उनको एक कहा, यश जोहर को एक पॉइंट बोला जिसलिए उन्होंने, मैंने देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछले पिक्चर में, तो उन्होंने 10 लाख दिए थे। तो उन्हें 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे, उन्होंने गाने तो मेरे अनंत बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने मैंने बड़े अच्छे बनाए
1: जी जी जी,
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीजें मिल जाएंगी, जो बख्शी साहब को आप फीस देते हैं अगर आपको सूट करता है। तो उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, नरेंद्र जावेद मिल रहे हैं जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे।
1: हाँ हाँ,
0: मैं दूंगा 5 लाख, मैंने मेरे मुकेश से कह दिया था, मैंने जी से कहा था कि मैं उतने पैसों में गाने में फ्री लिखूंगा अगर चाहिए हो तो। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं लिख सकता हूँ। तो वो क्या हो गया, तो गाने वाले अब था, उन्होंने कहा मेहनत करनी है, मैंने क्या कास्टिंग होनी चाहिए, मतलब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर होने थे, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर,
1: इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उतना ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कई पिक्चर में आ रही है उनकी दिलीप साहब ऋषि कपूर की, कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: तो होगा। बोले अब अगला स्टेप, सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुक गए, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डालो साहब,
1: कहानी नहीं है,
0: कहानी नहीं,
1: बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार,
1: दिलीप कुमार,
0: दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए।

0: हमारा शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब था वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिल साहब से पहले कहेंगे हम सब्जेक्ट देख रहे हैं आपको सुनाएंगे, आपको पसंद का एक सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे। तो कल वो मान गए, वे दोस्त की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है जो भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे समुन्दर के किनारे
1: कहानी ढूंढ रहे,
0: कहानी ढूंढ रहे क्या बनाया। वो सब्जेक्ट तो बन चुकी है, वो तो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग। तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया। उन दिनों मंगेश जी के साथ, वेकोपल जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अदा कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप लिख सकते हो उनको एज राइटर। उन्होंने कहा अच्छा, उनका रेट भी आधा हो गया, वो दूसरों के लिए पिक्चर ले लेंगे। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम
0: शुरू कर दिया
1: जी।
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात, ये कभी पिक्चर बना दे वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली
1: शक्ति,
0: वो शक्ति नहीं, उनकी पिक्चर का नाम कुछ और
1: था, मशाल
0: का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था,
1: ओ
0: मैंने ओके किया हुआ था,
1: लेजी ने डायरेक्ट की वो,
0: और वो मैंने ओके किया, अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मुझे चोपड़ा को सुना दू
1: जी,
0: यश जी को सुना लिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया,
0: मैं नहीं बोल सकता था
1: जी,
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता जावेद साहब
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए

0: इसका आइडिया सुनाया, व्यक्तियों को भी सुनाया,
1: दुनिया का,
0: दुनिया का आइडिया थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंख अपने कपूर का डायरेक्टर हमारा फॉरन में चला गया, जो देसा का भांजा क्या नाम है,
1: शेखर कपूर
0: नामों में आजकल गड़बड़ होती है। शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी पहली फिल्म की, कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉर्थ, और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी उनकी से, जावेद साहब लिखने वहां चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग पे, और 34 फिल्म लिख के ले आए वहां से और आके हमको सुनाए, बहुत अच्छे सीन थे, बढ़िया। लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ। तो मैंने कहा भाई अब मैं प्रोटीन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट देता हूँ मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता हूँ, तो तुम यार अपने दोस्त हो, तुम समझ सकते हो, तुम शेड्यूल करो। मैंने कहा पुलिस आपको कैसे कन्विंस करेंगे 34 सर चीन से शुरू करके पिक्चर, मुझे खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने। तो ये हम चलते दिलीप साहब से पहले नहीं थे सुनाते, तो फिर रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा,
0: वहां पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी में सुनूंगा।
1: अरे बाप रे,
0: उनका स्टाइल है जो इतनी देर सुन सकता हूँ, इतनी जो भी उन्होंने सुना है, उन्होंने पहले 20 सीन तो पूरे क्लियर थे, वो थोड़ा सुना दिए, आगे के सीन सुनाए, उनके कुछ एक सजेशन जो आए, इन्होंने कुछ आर्गुमेंट दिया, कोई नहीं जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था, वो सजेशन ले ली गई, वो फिल्म में रखी गई जो दिलीप साहब की, और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे, कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा, मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा, तुम्हें 10 बजे सेट पे ला के दूंगा।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो तेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वाकई ऐसा होता रहा।

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मेरे पहले जो मीटिंग मेरी हुई है, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी
1: ऐसे फिल्म करने का, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी जुक्कर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप में,
1: बहुत बड़े मेकअप में मेरी फिल्मों के मेकअप मैन में थे। और जब मैंने नूरी प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी जुक्कर का भी शेयर था 5%।
0: वाह,
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% देश चोपड़ा जी, 20% भूषण राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सूदी राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनोहर कृष्ण।

0: कार्यक्रम, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे, जो जैसे ने 10% करवा दिए, क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता, तो मैंने कहा नहीं बेटा तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो, तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश मल्ला ऑपरेटिव कैमरा मैन जो था, 5% KG उनका सीनियर कैमरा मैन, 5% पंडरी जुकर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब
1: जी जी जी गजब।
0: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुकर की 3-4 बहने उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है, वासुदेव धीर की 2 बेटियां उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए, मनमोहन किसका बेटा डॉक्टर पढ़ रहा है मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे, उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था खयाम साहब, ये पिक्चर पहले लूडी बनाने वाले थे जिसमें वंजा रमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सर्दी ने उनके लिए लिखी थी।
1: अच्छा,
0: सागर सर्दी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सर्दी ने उनको फिल्म की लिख के दी, जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी कि वो कुत्ता हीरो है, तो वो उन्होंने शुरू में गाने वाले भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके, और फिर वो पहले तो वंजा रमान जी के लिए बनाई, वंजा रमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं हुआ, नहीं बना या 2-4 नहीं हुए, उसके बाद वो चाहते थे बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनो,
1: प्रदीप को लेके,
0: प्रदीप को लेके, लेकिन वो नहीं बन पा रही, लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानिसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, रेडियो भी सुना दिए थे, तो मतलब रिजर्व करते हैं 10%, 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी जुकर ने
1: दिलीप साहब को बता,
0: दिलीप साहब को बता दी,
1: ओहो गजब,
0: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, ये जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है,
1: हाँ,
0: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है,
1: हाँ।
0: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिलने मुझे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे,
1: ओ, क्या बात है,
0: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
1: जी,
0: वो पंजाबी वहां के थे पिशावर के
1: जी
0: उस तरफ के, और मैं बफा खत्ताबाद मानफेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, बोलो जरा यार के बदले जरा,
1: अच्छा
0: यारा
1: जी जी जी, इसीलिए वो सागर यारा,
0: सागर यारा
1: किताब में
0: आई, करेक्ट। तो मैंने कहा बातचीत सब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूंगा, जरूर करूंगा, तेरा प्रोग्राम भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूंगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उनसे बैठूंगा पूरा, मुझे क्यों चीज पसंद नहीं आई वो कहूंगा, कहा जी वो ऐसे सुनील जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ किसी को बताइएगा मत, और इस तरह से बात शुरू हुई
1: और इस तरह की दुनिया बनी।
0: हाँ।

0: मन की फिल्म बनी थी।
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में
0: ऐसे ही होता था,
1: एक शेड्यूल है उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर सब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकम्फर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन चीजों के साथ, बड़ा ही सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपने उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता उस।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट कर दी थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था। दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ
0: जी
1: है। फिर गेस्ट रोल में सारा जी, इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दी,
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम
1: हाँ। तो आप ये तो लोग समझते थे लॉटरी लगी है
0: जी,
1: तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते हुआ ना।
0: जी जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म होगी,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया ना, उनको उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी होगी, मैंने तोड़ी नहीं थी।
0: जी जी।
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था, पहले मीटिंग हो चुकी थी
0: जी।
1: तो उनके पास मैं सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, दो एक दो चीजें, एक पहले मैं लेके गया, एक को प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर, उनका मेरे पास श्री देवी की डेट है,
0: ओ,
1: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा क्या ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्री देवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ फिर आ जाओ। उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन ये था, आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
0: जी,
1: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक होता ना फुल स्क्रीन पे फॉर्म नहीं, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेटे, जितेंद्र ने कहा।

0: बेटे को फोन करूंगा तो फिर हो जाएगा। और आगे बता दू पिक्चर जितेंद्र सिंह मेरी भी छुट्टी पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं हम, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान वो दोनों साथ में पढ़े दोस्त भी है। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते उनको बोलते ये बात, वो सोचे अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
1: जी,
0: कंप्लीट हो गई थी अभी रिलीज और उससे पाके पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उनको दूसरे साहब को लेके चावला साहब डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा ये है ये हमने सोचा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, उन्होंने रमेश बोल रहे थे, रमेश आप यहाँ बैठिए हम दोनों जरा अलग बात करना चाहते हैं।
1: ओके
0: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों वहां आए बहुत खुश थे।
1: तो पैसों वगैरह की बात,
0: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर इनका क्या रेट होगा वो बातचीत तय होगी। दोनों खुश थे और सलीम साहब ने कहा मेरे सब डिसाइड होगा भाई, सब ये सर्टिफाइड है पूछ लीजिए उनसे। चावला साहब ओके, मेरे 100% ओके, ओके हो गया सब। हम निकले, हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड बहुत माने, तो रेमलॉर्ड लैब में गए नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई नीचे लिफ्ट से नहीं आए सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे पुरूर साहब गिर गए, उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका
1: जी जी जी,
0: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक थके, और सब मालिक आ गया रेमलॉर्ड मालिक उनका वो आ गया और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रेमलॉर्ड वाले ने बोला प्लीज यहां से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला
1: हॉस्पिटल ले गए,
0: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए क्योंकि जा चुके जो मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहां बुलाया गया लोकल उसने कहा नहीं, उनको वहां पीछे सीट पर लिटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी सारा गार्डन यहाँ पे आए और वहां रहते थे और चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
1: अटक गया
0: फिर हटा।

भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं

0: चल जाएंगे नहीं कहां जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए
1: अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रहेगी है मैं बना चुका हूँ वो रिलीज होनी चाहिए। अब साहब रिलीज के चक्कर में बजट कितना उन्होंने किससे क्या उधार लिया वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उस जगह उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए लिया हुआ था फैमिली के लिए लिया हुआ था शिमले के थे वो तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज्यादा उधार है तो सबसे मिटिए करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपको पैसे मिलेंगे तो इतने पे मान जाइए चल गई तो आप फिर शेयर रख लीजिए अभी से
2: जी जी
1: ना चली तो आप झपके लग गए। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बापरे
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ने कहा था साले सूत्र को अवार्ड मिलेगा रोल कर और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के तो उसके बाद संजय दत्त के मेरे बहुत दोस्ती होगी मतलब अगली पिक्चर में देखिए आप संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
2: जी जी जी
1: उस तरह साहब हमारे फिल्म में भाग्य सर्कमस्टांसेस एक्टर्स का वो अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दी ना
2: लेकिन आज उस फिल्म के लोग बहुत
1: यार देखते नहीं करते भी है देखते भी है याद भी करते सब है गाने देखता है सब कुछ है लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही है ये सब चाट के होगी
2: बिल्कुल और थी भी वो
1: उस तरह की है तो माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
2: बड़ी स्टार
1: स्टार कर अच्छा मुहूर्त हुआ अच्छी तरह से बनाई बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा ये नहीं करूंगा मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे मैसूर पहले तो चलो जाओ आते हैं क्योंकि शिमला शूटिंग हो वहां नॉर्थ में शूटिंग हो के जहां पे बोला जो जिस तरह लेने के लिए कि ये विजुअल आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे ऐसी फिल्म थी आप उसका विजुअल देखिए आप बड़ा कैमरामैन लिया महाजन साहब कैमरामैन
2: ओहो
1: के महाजन तो सब चीजें उन्होंने किसी चीज में कमी नहीं की क्या हुआ था डेथ होनी थी और हार्ट अटैक सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहले तो फिर बाद में पता चला कि उनकी वाइफ ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट पहले तो प्रॉब्लम थी उनकी
2: जी जी जी
1: अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

FM 107.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 5 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार लेके जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं तेलंगाना में बेहतर बुनियादी ढांचे और निर्बाध कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ा कदम है।
1: तेलंगाना हैदराबाद के हजारों नौजवानों को रोजगार का माध्यम बनेगा। यहाँ बनने वाली गाड़ियाँ, मशीनरी, यहाँ लगने वाले फूड प्रोसेसिंग उद्योग, ये तेलंगाना के श्रमिकों और किसानों को भी सशक्त करेंगे। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा।
0: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने श्री जोसेफ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ नौ मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद रही। प्रधानमंत्री ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई सरकारी कार्यक्रमों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़े सरकारी कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और भाजपा नेता मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया है। कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु

0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेन देन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वजवाला एमवी होडियंस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सिखाने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत शामिल थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: 2867 पर भरपाई से मुक्ति पाएं।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
1: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
2: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
3: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
2: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172
2: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाजों में डर फिल्म का ये गाना। संगीत है शिव हरि का।

लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में, फिल्म का नाम है दिल तो पागल है, संगीत है उत्तम सिंह का और बोल है आनंद बख्शी के।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

अगर आपको भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और आप इस बुरी आदत से निजात पाना चाहते हैं, तो अपनाइए ये टिप्स जो आपको मैं आज लम्हे प्रोग्राम में बताने वाला हूँ। तो सुनते रहिए आरजे चेतन के साथ आज का लम्हे प्रोग्राम। क्रोध प्रबंधन, एंगर मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें अपने आप को कंट्रोल करने और सकारात्मक तरीके से समस्या का सामना करने में मदद करता है। ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें हम स्थितियों या व्यक्तियों के प्रति हमारे प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के उपायों को सीखते हैं। यह हमारे दिमागी और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है और हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को सुखद बनाते हैं। क्रोध को सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए ध्यान, स्थिरता और तंत्र मंत्र तकनीकों को अपनाने में मदद कर सकती है। गुस्सा आना सुनने में बड़ी छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। आजकल हर किसी को बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, यहाँ तक कि सबसे शांत व्यक्ति को भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हम इसे कंट्रोल भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। ज्यादा गुस्सा आने से आपकी मानसिक स्थिति पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है और शरीर में नई बीमारी भी पैदा होती है, जैसे चिंता, अवसाद, सिरदर्द, नकारात्मकता और बीपी की समस्या आदि। यदि आप इस आदत से तंग आ चुके हैं और इसे निजात पाने के लिए कुछ आसान टिप्स देने जा रहा हूं मैं आपका आरजे चेतन इस लम्हे प्रोग्राम में। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, सबसे पहले गहरी सांस ले। जिस भी पल आपको गुस्सा आए, अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर गहरी सांस ले। इससे आपको अपने गुस्से से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। मेडिटेशन में भी ये दोनों प्रक्रिया शामिल है। गहरी सांस आपको तनाव से मुक्त करने में मददगार साबित हो सकती है और इससे आपका मन भी शांत रहेगा। अपना मन पसंद गाना सुने। अच्छा संगीत आपके गुस्से और मन दोनों को शांत करता है। म्यूजिक थेरेपी मन में पनपने वाले नकारात्मक विचारों को रोक सकता है। अच्छा संगीत सुनने से आपका ध्यान भी उस बात से हट जाएगा जिससे आपका गुस्सा और कम हो जाएगा। किसी भरोसेमंद यानी ट्रस्टवर्थी फ्रेंड से बात करें। इसी तरह अगर आपका कोई भरोसेमंद दोस्त है तो आप हमेशा अपनी भावनाओं को उनके सामने व्यक्त कर सकते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं इस बारे में किसी को बताएं या फिर बात करना हमेशा आपके गुस्से को बाहर निकालने का एक सहायक तरीका है। अगर ऐसा कोई दोस्त नहीं है तो आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं। जब आपका दिमाग परेशान करने वाले विचारों से भर जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो संभव है कि आप बहुत क्रोधित होंगे। ऐसे समय में आप शब्दों में सुकून ढूंढ सकते हैं। रिलैक्स, टेक इट इजी और यू विल बी ऑल राइट, यू विल बी ओके जैसे शब्द या व्याख्यान सभी अच्छे उदाहरण हैं। यदि आपके किसी से अभी अभी व्यक्तिगत रूप से या किसी कॉल पर झगड़ा हुआ है तो ये जरूरी है कि आप अकेले रहने के लिए कुछ समय निकाले, एक शांत कमरे में सोए और लोगों के आसपास रहने से कुछ समय के लिए बचे। इससे आपको वह शांति मिलेगी जिसकी आपको आवश्यकता है और इसके बारे में सोचने का समय भी मिलेगा। पैदल चलने से आप अपने

गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। यह न केवल आपके सभी मांसपेशियों को आराम देता है बल्कि आपको शांत करने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह आपको प्रक्रिया के बारे में सोचने के अधिक समय भी देता है। जब भी किसी को गुस्सा आता है तो बिना ज्यादा बात किए वहां से उठना है और थोड़ा टहल कर आना चाहिए। क्रोध प्रबंधन एंगर मैनेजमेंट एक उपचार नहीं है बल्कि एक चिकित्सा है जिसे आप अपने परामर्शदाता के साथ अपने मुद्दे पर रखते हैं और आप उन्हें कैसे सुधारेंगे इस पर निर्भर करता है। इसमें आपके चिकित्सक के साथ खुली बातचीत की एक श्रृंखला शामिल होती है। नई प्रणाली का पता लगाते हैं जहां आप अपनी निराशा को बाहर निकाल सकते हैं या उन्हें नियंत्रण में रख सकते हैं। इसमें मूल रूप से कई स्तर शामिल है और आपकी चिकित्सीय स्थिति के आधार पर चिकित्सक आपके द्वारा होने वाले स्रोत की संख्या का सुझाव देंगे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat feedbackamc1@gmail.com।

क्रोध को कभी भी दबाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसे एक अभिव्यंजक और स्वीकार्य तरीके से बाहर जाने देना चाहिए। उपचार के सामान्य लक्षण में से एक यह शामिल होगा कि आप चीजों को कैसे हल्के से लेते हैं। आपको एक अलग दृष्टिकोण से स्थिति को देखना सिखाया जा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हर चीज को मजाकिया अंदाज में लेने के लिए तैयार हो सकते हैं और उस पर हंस सकते हैं। क्रोध प्रबंधन आपको अपनी पहचान करने और उन चीजों को स्वीकार करने में मदद करता है जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं। कुछ दुर्लभ मामलों में दवाइयों और दवाइयों को शांत प्रभाव में शामिल किया जा सकता है। यदि आप अवसाद से पीड़ित हैं, तो अवसाद निरोधक गोलियां निर्धारित की जा सकती है। एक चिकित्सक का चयन करते समय सुनिश्चित करें कि आप कई वर्षों के अनुभव वाले एक को चुनते हैं और जो आपके मुद्दे को संबोधित करने के लिए पर्याप्त सक्षम है। सबसे बड़ी गाइडलाइन ये होगी कि अगर स्थिति इसकी मांग करती है तो आपकी जीवन शैली और आपके परिवार को भी बदलना होगा। गुस्सा बिल्कुल एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक भावना है जिस पर आप नियंत्रण खो सकते हैं और आपके शरीर को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। आपको एक ताजा और शांतिपूर्ण वातावरण में रहने की सलाह दी जाती है जहां तनाव आपको प्रभावित नहीं करता है। यदि आपके कार्य की प्रकृति आपकी स्थिति का मूल कारण है तो आपको काम में बदलाव देखने के लिए कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स एंगर मैनेजमेंट के बारे में। हम मानते हैं कि यह बहुत छोटी समस्या है, पर यह छोटी छोटी समस्याएं आगे बढ़कर बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आती है और आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको जड़ से उकार दीजिए और एक हैप्पी फैमिली और एक हैप्पी लाइफ लीड कीजिए। इसके साथ ही आज का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब प्रस्तुत है नॉन स्टॉप नगमे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलगु वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान

0: समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में एक विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz से आकाशवाणी है, तो तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

0: पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
2: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रही। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
1: ये आकाशवाणी है।
2: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
1: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
2: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
1: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
2: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
1: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
2: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।
1: ये आकाशवाणी है,
3: आकाशवाणी है।
4: आओ हम सुनते हैं धुरंधर फिल्म का गाना अफसाना खान ते रिबेल दी आवाज़ें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा में नगर निकाय का आम चुनाव और पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। हिसार में 72%, सांपला में 71% और उकलाना में 69% मतदान दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में कल पूरे उत्साह के साथ अमृत पर्व मनाया जाएगा। हरियाणा के शिव मंदिरों में भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा का 7 दिन का रिमांड दिया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में नगर निकाय का आम चुनाव और पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। पंचकुला, अंबाला, सोनीपत और अन्य कई स्थानों से मिली जानकारी के अनुसार मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहा। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। चुनाव संपन्न होने से पहले मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार उकलाना नगर पालिका के लिए 69% मतदान हुआ। राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने बताया कि अभी तक मिली जानकारी के अनुसार सभी स्थानीय निकायों में 50% से अधिक मतदान हुआ। नगर निगम अंबाला में 50%, हिसार में 72%, रोहतक के सांपला नगर पालिका में 71%, पंचकुला में 50%, नगर निगम सोनीपत में 45% तथा रेवाड़ी में 60% और मतदान दर्ज किया गया।
1: अभी तक जो हमें सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो टोटल वोटिंग है वो 50% का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। अंबाला में अभी तक जो रिपोर्टेड है 50%, हिसार में 72%, पंचकुला में भी 50%, रेवाड़ी 60%, रोहतक 71% और सोनीपत में 45% अभी तक वोटिंग रिपोर्टेड है। और ये अभी और काफ़ी बढ़ने की संभावना है, बिकॉज जैसे जैसे रिपोर्ट अपडेट होगी तो ये बढ़ेगी। अभी
0: उन्होंने बताया कि शाम 6 बजे तक जो लोग लाइनों में लगे थे उनको वोट डालने दिया जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि शाम के बाद मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। फरीदाबाद के तिगांव उपमंडल के गांव शाहूपुरा खादर में आयोजित पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। चुनाव के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए। प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार क्षेत्र का दौरा कर स्थिति पर नजर बनाए रखी, जिससे मतदाताओं ने बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ग्रामीणों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। शाम 4 बजे तक कुल 80.3% मतदान दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। गृह मंत्री ने देश में किए जा रहे दीर्घकालिक बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की, जिनमें महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्व अनुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। बैठक में जन जागरूकता, जानमाल

0: नुकसान को रोकने के लिए निर्माण कार्यक्रमों और आवश्यक राहत सामग्री और चिकित्सा तैयारियों के पर्याप्त भंडार को सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे।
1: कल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
0: भगवान शिव से जुड़े जो 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं और उनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थ स्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। सोमनाथ अमृत पर्व पर अंबाला छावनी स्थित प्राचीन हाथी खाना मंदिर में भी कल एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी होगा। कार्यक्रम में कलश यात्रा निकाली जाएगी और प्रमुख संतों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों द्वारा भगवान शिव शंकर द्वारा समुद्र मंथन व शिव तांडव के साथ साथ भगवान शिव पर आधारित गीत की प्रस्तुति भी दी जाएगी। फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी के शिव मंदिर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आयोजन को सफल एवं व्यवस्थित बनाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण और उससे जुड़े राष्ट्र गौरव के विषयों को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम की खास बात यह रहेगी कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमनाथ से तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कुरुक्षेत्र से लाइव संबोधन भी होगा। इसके लिए लाइव प्रसारण की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस ऐतिहासिक आयोजन से जुड़ सकें। उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, पेयजल, बैठने और यातायात प्रबंधन सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की हिरासत में भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया था। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज हिसार आकाशवाणी केंद्र में सुगम संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गायक सुमेश जोशी ने प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रम प्रमुख पवन कुमार ने बताया कि आकाशवाणी की समृद्ध विरासत को लोगों तक पहुंचाने के लिए 90 वर्ष पूरे होने पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी 17 तारीख को आकाशवाणी हिसार में एक मैराथन भी आयोजित होगी, जिसमें आकाशवाणी की समृद्ध विरासत को लोगों के सामने लेकर जाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार यह लोगों की आवाज बनी और किस प्रकार देश के लोगों ने इसको अपनाया। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा में नगर निकाय का आम चुनाव और पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। हिसार में 72%, सांपला में 71% और उकलाना में 69% मतदान दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: के बराबरी वाले सिक्ख्या दे दृष्टिकोण नूं मजबूत करदी है। पंजाब नूं स्कूल सिक्ख्या विच भारत दे सब तों वधिया प्रदर्शन करन वाले सूबे विचों इक वजों मानता दित्ती गई है। नीति आयोग सिक्ख्या गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 नूं मुख बुनियादी सिक्ख्या मापदंड ते इस नूं केरल तों वी अगे रख्या। इस प्राप्ति नूं प्रणालीगत सुधारां ते जमीनी पद्धर ते समर्पण वलों संचालित पंजाब दे योग दी शुरुआत विचों वधाई दिंदियां ते करार दिंदियां पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि इह सम्मान हर उस मापे विद्यार्थी ते अध्यापक दा है जिसने सरकारी स्कूलां नूं छड्डण तों इनकार कर दित्ता। श्री मुक्तसर साहिब जिले च सुरक्षित स्कूल वाहन नीति नूं सख्ती नाल लागू करन लई एक स्कूल विच स्कूल बसां दी चैकिंग कीती गई ते 14 स्कूल बसां दे चलान कीते गए। इस मौके खेतरी ट्रांसपोर्ट अधिकारी जसविंदर सिंह ने स्कूल बच्चों की सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण ते सुरक्षित स्कूल वाहन नीति नूं लागू करन लई सारे स्कूल वैन दे ड्राइवरां नूं ट्रैफिक नियमों बारे जागरूक कीता ते नाल ही हदायत कीती कि जो नीतियां दीआं शर्तां नूं पूरा नहीं करनगे उन्हां खिलाफ सख्त कार्रवाई कीती जाएगी। इस तरह स्कूल वैन दे ड्राइवरां नूं दस्सिया गया कि इस तहत बस दे पिछे ते अगे स्कूल बस लिखा होना अते बस विच अग बुझाऊ यंत्र होना लाजमी है। अज मां दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन दुनिया भर में मावां का सम्मान करने लई मई के दूजे एतवार को मनाया जाता है। पहले विश्व युद्ध तो बाद फ्रांस ने मावां का सम्मान करने लई मई के आखिरी एतवार को मां दिवस मनाने की प्रथा में रस्मी रूप दिता सी। यह दिन मातावां दादियां ते होर मावां वर्गियां औरतां दे निस्वार्थ ते कुर्बानी वाले सुभाव नूं सत्कार करन लई मनाया जांदा है। इसे तहत अज गुरदासपुर विच मदरस डे छोटे बच्चों ने वक्रे ढंग नाल मनाया। इन्हां बच्चों ने मदरस डे ते एक समाज नूं वक्खरा सुनेहा देण लई जानवरां दे बच्चों नूं भी उन्हां दी मां दी जरूरत होंदी है इसलिए उन्हां अज गौशाला विच जा के सेवा कीती ते इस मौके बच्चों ने समाज नूं सुनेहा दिंदा आख्या
1: जान के माया में है जो है आज हम यहाँ पे गौशाला में आए हैं और आज है मदर्स डे है और मैं ये कहना चाहूंगी कि काउस को भी फीलिंग होती है और उनके भी बच्चे होते हैं। जैसे हम अपनी मम्मा और पापा से अलग नहीं हो सकते वैसे ही वो भी अलग हो सकते। गाय को नहीं मानना चाहिए वो हमारी माँ की तरह होती है।
2: मेरा नाम आरव है। आज हम गौशाला आए हैं वहाँ पर हमने काउस को फीड किया है और कई एनिमल्स उनको उनकी अपनी मदर से अपने पेरेंट्स से अलग किया जाता है उनको मार रहता है जो कि अच्छी बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी वी हैव नो राइट टू डू दैट थिंग। इसी बेसिस पे हम आज लोगों को मैसेज दे जाते हैं कि आगे से ऐसा मत करें उनके पेरेंट्स को अलग ना करें। हम सोचते हैं दे आर वॉइसलेस दे कांट डू नथिंग बट दैट्स रॉन्ग।
0: गुरदासपुर डिप्टी कमिश्नर आदित्य उपल ने अज फसलों की रहन खूंद साड़न के रुझान ठल पाने पिंडों का दौरा किया अपनी मौजूदगी खेतों में लगी अग न फायर ब्रिगेड सिविल पुलिस विभाग दीमों के सहयोग बुझाया। इस मौके उन्होंने आख्या
3: देखो सारी टीमों वालों अच्छ चैकिंग की जा रही है। सीजन तो पहले काफी अवेयरनेस एक्टिविटीज की गई जी मशीनरी हैगी एग्रीकल्चरल उसके बारे भी काफी अवेयरनेस हैगी है। जो स्टबन बर्निंग इंसीडेंट्स ने पिछले सालों में काफी घटे ने बट फिर भी इंसीडेंट्स आ रहे हैं तो साडा ही कोशिश हैगी है कि इसको रोकया जाए।
0: पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के प्रोफेसर मनुखी विज्ञान विभाग के सबका चेयरपर्सन ने फोरेंसिक विज्ञान खोज में विश्व पद्धर से 11वां रैंक प्राप्त किया है। डॉक्टर केवल कृष्ण इस साल में मुलांकन भारत के चोटी के दर्जे के फोरेंसिक विज्ञानियों वजों उभरे ने। इन रैंकिंग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एल्सवेयर वालों जारी 2025 की रिपोर्टों के आधार से उन्होंने दुनिया भर के 15,009 फोरेंसिक विज्ञानियों में कानूनी और फोरेंसिक मेडिसिन श्रेणी में रखा गया। रैंकिंग कई मापदंड के आधार से जिस विच प्रकाशित खोज पत्रों की गिनती प्राप्त करने के हवाले शामिल है। यह प्राप्ति सिर्फ यूनिवर्सिटी लिए नहीं सगों देश लिए भी एक माण वाली गल है। मौसम विभाग ने पंजाब ते हरियाणा विच कल लई मीह पैण बारे ऑरेंज अलर्ट अते इस तों बाद 14 मई तक येलो अलर्ट जारी कीता। इस समय दौरान पंजाब च अज तों 14 मई तक वख वख थावां ते हल्की तों दरमियानी बारिश हो सकती है ते अज ते कल वख वख थावां ते गरज चमक नाल तेज हवावां वग सकदियां ने। इसी तरह हरियाणा च अज तों 14 मई तक वख वख थावां ते हल्की तों दरमियानी बारिश अते गरज चमक नाल तेज हवावां होण दी संभावना जताई गई है। इस दौरान केंद्र शासित प्रदेश विच वी अज 14 मई तक वख वख थावां ते हल्की तों दरमियानी बारिश की पेशीनगोई की गई है। हालांकि अगले 3 तों 4 दिनों दौरान वध तों वध तापमान च कोई वड्डी तब्दीली नहीं होगी। इस दौरान हरियाणा विच वध तों वध तापमान भोपाल च 45.2 डिग्री सैलसीयस अते पंजाब ते फरीदकोट विच वध तों वध तापमान 42.8 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। आईपीएल क्रिकेट विच अज प्ले ऑफ क्वालीफाइड मैच विच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दा मुकाबला रायपुर दे शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम च मुंबई इंडियंस नाल होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे खेलिया जाएगा। खास खबर एक बार फिर तो गुरुग्राम की एंटीमनी लॉन्ड्रिंग अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की 7 दिन रिमांड पर भेजा। केंद्र सरकार ने किरत को

इसी तरह अमृत बाणी प्रोग्राम हुन इत्थे ही समाप्त हुंदा है। FM 107.2 MHz ते ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर च तुसी सुनोगे अगला प्रोग्राम विशेष जयमाला। प्रोग्राम असी विविध भारती ते मुंबई केंद्र तो रिले करांगे।

0: ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ।
1: वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
3: प्रसिद्ध है विशेष जयमाला।

विशेष जयमाला सुनने वाले सभी साथियों को मंत्री वर्मा का नमस्कार। फौजी साथियों, आज के इस कार्यक्रम में महावीर चक्र की शौर्य गाथा की कड़ी में आप सुनेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल कुशल चंद की अदम्य वीरता की शौर्य गाथा।

साथियों, अपने देश से जो व्यक्ति प्रेम करता है उसके सीने में शौर्यता की लौ धधकती है, वही देश की खातिर अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। हमारे भारत देश की भारतीय सेना में ऐसे वीर जाबाज हुए हैं और हैं जो एक अनमोल मोती की तरह जुड़े हुए हैं। उनकी एकता देशभक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि कोई भी उनके अटल इरादों को हिला नहीं सकता, ना ही उनकी कुशल रणनीति का अंदाजा लगा सकता है। अपनी मातृभूमि की रक्षा के खातिर वे सरहदों पर बेखौफ तैनात रहते हैं। कैसे भी दुर्गम इलाके हो या बर्फीले रास्ते, उनके कदम उन पर भी डटे रहते हैं। गर्व होता है हमें उन सभी फौजी साथियों पर, उनकी कर्तव्य निष्ठा के आगे शीश झुक जाता है। उनके जज्बे को दिल से नमन। ये मत पूछो कि वतन ने तुमको क्या दिया, ये सोचो कि तुमने वतन के लिए क्या किया।

साथियों, ऐसी ही वीरता और बहादुरी की मिसाल पेश की लेफ्टिनेंट कुशल चंद ने, जिन्हें सेवियर ऑफ लद्दाख के नाम से जाना जाता है, यानी लद्दाख के रक्षक। ये अपने आप में बड़े गर्व की बात है। इससे उनकी शौर्यता की कहानी का पता चलता है। एक व्यक्ति क्या भी कर सकता, यानी उसके इरादों में वो आग हो जो दुश्मनों के आक्रमणों का मुकाबला बड़ी कुशल रणनीति के तहत कर सके। ऐसा ही कुछ आपने भी किया, जिससे भारतीय सेना के इतिहास के पन्नों पर आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। भारतीय सेना में ऐसे वीर अफसरों की शौर्यता एक मिसाल पेश करती है और कई पीढ़ियों को प्रेरित भी करती है। साथियों, लद्दाख वो खूबसूरत इलाका जो कई पर्वतमालाओं से घिरा अपनी सुंदरता को बयां करता है। बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां, घाटियां शीतलता का आभास कराती, वहीं हरी भरी प्रकृति मन को मोह लेती है। लेकिन कभी कभी ऐसी सुंदरता को नजर लग जाती है जिनके पीछे छिपी होती है कुछ दुश्मनों की नापाक नजरें और इरादे।

वहाँ की खुशहाली में दहशत का जहर घोलने को आतुर रहते हैं। इसके लिए वे उन पर कब्जा करने की तमाम योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारी सेना के रणबांकुरे उन्हें सफल होने नहीं देते। यही तो है उनके हौसलों की खासियत। दिल, तन और मन अपने वतन और तिरंगे की आन बान और शान में देशभक्त के सुरों से सज जाता है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका विशेष जयमाला कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, लेफ्टिनेंट कुशल चंद का जन्म ठाकुर मंगल चंद के यहाँ सन 1919 को जेमूर खार में हुआ था। आपके पिता लाहौली रियासत के पूर्व वजीर यानी मंत्री रह चुके थे। परिवार में कई जाबाज योद्धा अपनी सेवाएं दे रहे थे। ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ और बचपन से ही शौर्यता के किस्से कहानियां आपको प्रेरित करते रहे। कहीं न कहीं मन आतुर होता रहा कि आगे चलकर उन्हें भी कुछ ऐसा करना है जिससे उनका और उनके परिवार का नाम रोशन हो और देश में उन्हें एक पहचान मिले।

साथियों, लेफ्टिनेंट कुशल चंद के चाचा राय बहादुर ठाकुर अमरचंद ने प्रथम युद्ध के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। बस लेफ्टिनेंट कुशल चंद के मन पर भी देश प्रेम की हवाओं ने दस्तक देनी शुरू कर दी। आखिरकार वो दिन आ गया जिसकी उन्हें चाह थी, जब सितंबर सन 1941 को डोगरा इन्फेंट्री रेजिमेंट की दूसरी बटालियन में उनको शामिल किया गया। ये पल उनके जीवन का सपना था और खुशियों की वो भीनी सी फुहार थी जिसमें मातृभूमि की मिट्टी की सोंधी सी महक समाहित थी। और साथियों, ये वही बटालियन थी जिसमें उनके बड़े चचेरे भाई ठाकुर पृथ्वी चंद ने भी अपनी सेवाएं दी थी, जो कि एक बहादुर योद्धा रहे। साथियों, जब 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्र

अलावा आजादी की हवाएं पूरी फिजाओं में फैल गई थी। लोगों के मुरझाए चेहरों पर खुशी खिलने लगी थी और हाथों में तिरंगा लहरा रहा था। उस वक्त कई रियासतें भारतीय प्रभुत्व में शामिल होने का मन बनाए बैठी थी, किंतु वहीं हैदराबाद और कश्मीर रियासतों को भारत में विलय होना मंजूर नहीं था। वे अपना अलग प्रभुत्व बनाना चाहती थी। उधर दुश्मनों ने भी कई क्षेत्रों में अपना कब्जा शुरू कर दिया था, जिसकी भनक भारतीय सेना को लग चुकी थी।

0: सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की

कुर्बानियां, देश के लिए कुर्बान हो जाने की जज्बी। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

विराम के बाद एक बार फिर आपका विशेष जयमाला कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, ये किस्सा उस वक्त का है जब फरवरी सन 1948 में लेफ्टिनेंट कुशल चंद उन दो अधिकारियों में से एक थे जिन्होंने स्थानीय मिलिशिया बल बनाने और लद्दाख घाटी की रक्षा करने में मदद करने की खुद अपनी इच्छा से लेह जाने की बात रखी थी। इसकी उन्हें स्वीकृति भी मिल गई थी। 4 माह के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य बलों के एक प्लाटून और लगभग 20 स्थानीय मिलिशिया के साथ लेफ्टिनेंट कुशल चंद उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दुश्मनों ने कब्जा करना शुरू कर दिया था।

साथियों, युद्ध का मंजर बड़ा भयानक था। दोनों ओर से वादियों में गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। कोई किसी से कम नहीं था, लेकिन लेफ्टिनेंट कुशल चंद अपनी तत्परता बहादुरी दिखाते हुए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देकर उन्हें सिंधु घाटी के साथ लेह की ओर बढ़ने से रोक दिया। उन दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फिर गया। उन्होंने दुश्मनों के साथ एक विशेष गुरिल्ला युद्ध से उनका मुकाबला किया। उनके साथ कई साथियों का समूह था जो उन्हें कवर दे रहा था और वे इस तरह रेंगते हुए पुल के पास पहुंच गए और पुल में आग लगा दी। उन्होंने खलत्सी पुल पर दुश्मनों को 24 घंटे के लिए रोके रखा। इस कारण से सप्ताह भर की देरी का दुश्मनों को सामना करना पड़ा। वे कुछ कर पाने में असमर्थ हो गए। लेह में संचार की सुविधाएं भी नहीं थी। वे अपने कमांडर से संपर्क करने में असुविधा भी महसूस कर रहे थे।

साथियों, जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, उचित राशन की सुविधा से सैनिक वंचित हो गए थे और यहां तक मोर्टार के बिना और गोला बारूद की भारी मात्रा में कमी का सामना लेफ्टिनेंट कुशल चंद्र और उनकी फौजी टुकड़ी को करना पड़ रहा था। ऐसी विषम स्थिति में भी उनके हौसलों और जज्बों में कोई कमी नहीं आई थी। वे बड़ी बहादुरी से युद्ध के मोर्चे पर डटे हुए थे। यही तो है हमारी भारतीय सेना के जाबाजों की खासियत। जब वे कदम बढ़ा लेते हैं तो पीछे नहीं हटते, दुश्मनों को परास्त करके ही दम लेते हैं और उनकी रणनीति के आगे दुश्मनों की एक न चल सकी और इस तरह वे लद्दाख के रक्षक बन गए। इस तरह उन्होंने भारतीय सेना की उच्च परंपराओं को बनाए रखा और अन्य लोगों के लिए एक संदेश भी दिया कि यदि जिगर में मजबूत हौसला हो तो फतेह ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती, वो एक न एक दिन पास आएगी और तब जीत का परचम नीले आकाश में लहरा उठेगा। बाद में वे लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नति मिली और लेफ्टिनेंट कुशल चंद ने 3 साल के लिए नवी डोगरा इन्फेंट्री बटालियन की कमान संभाली। सफलतापूर्वक कमान संभालने के बाद उन्हें कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल कुशल चंद का विदेश में एक कार्यकाल तय था, क्योंकि जिस विमान में वे ड्यूटी पर जाने के लिए यात्रा कर रहे थे वो लाओस के ऊपर से जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ऐसी स्थिति में वे नहीं बच पाए और इस संसार से सदा के लिए जुदा हो गए। ऐसे वीर जाबाज ऑफिसर की मिसाल हम सभी के हृदय में जिंदा रहनी चाहिए। साथियों, भारत सरकार द्वारा उन्हें सन 1950 में महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया। उनकी ऐसी वीर बहादुरी को शत शत नमन, सलाम और प्रणाम। साथियों, लद्दाख घाटी की आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनकी और उनके जवानों की आभारी रहेंगी।

आज विशेष जयमाला की शौर्य गाथा की कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित लेफ्टिनेंट कुशल चंद के अदम्य साहस से भरी शौर्यता की कहानी। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। शोध आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, संयोजन और प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो अब मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमार साहब कह रहे थे कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार कयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साथ एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना तो आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है।

0: भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
1: शांतिपूर्वक संपन्न हुए। हिसार 72%, सांपला 71% अते उकनाना 59% तो वध वोटिंग दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला राखनीकरण के मुद्दे से कांग्रेस के औरतों नाल धोखा करन दा दोष लाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित हड़ अते गर्मी की लहर की स्थिति नाल निजिठण लई देश की तैयारी की समीक्षा की।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रही हैं कल्पनाथ सिंह की लिखी हास्य नाटिका यात्रा प्यारे लाल की।
1: पाँव लागी
2: आयुष्मान यजमान है आयुष्मान, भगवान भला करे, सब कुशल मंगल तो है प्यारे लाल जी।
1: आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है पंडित जी।
2: अच्छा अच्छा, ये समझा समय कैसे आगमन हुआ, क्या कोई खास बात है?
1: बस एक निवेदन है पंडित जी। हाँ। असल में ससुराल जाने का इरादा है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि कोई शुभ मुहूर्त इस यात्रा के लिए आप बता दें तो बड़ी कृपा हो।
2: क्यों नहीं क्यों नहीं, शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी शुभ दिन सब कुछ आपको बताए देता हूँ, जरा पत्ता देखकर अभी बिचारता हूँ। यजमान
1: जी,
2: इसके पहले आप कितनी बार ससुराल हो आए हैं?
1: पंडित जी, सच बात तो यह है कि अभी तक मैं एक बार भी ससुराल नहीं गया, ये मेरी ससुराल की पहली पहली यात्रा होगी।
2: क्या क्या क्या क्या कहा यजमान, क्या इसके पहले आप एक बार भी ससुराल नहीं गए?
1: जी
2: इस युग में ससुराल की यात्रा में इतना विलंब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो लगता है आप जरूर कुछ भूल रहे हैं।
1: नहीं नहीं नहीं पंडित जी, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ कि ब्याह के बाद आज तक मैं ससुराल नहीं गया।
2: जरूर कोई कारण होगा, खैर कोई बात नहीं।
1: पंडित जी बात यह है कि मुझे पहले बड़ी शर्म लगती थी और फिर मेरी पत्नी मालती ने भी मुझसे कई बार कहा, लेकिन पंडित जी क्या करें, कोई जुगाड़ ही नहीं लगा, अब गलती हो ही गई।
2: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हाँ तो आज कौन सा दिन है?
1: आज
2: रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी तीन दो पांच, एकादशी द्वादशी और त्रयोदशी। भगवान भला करे, मंगलवार को प्रातः 4:21 से पूरी ही आपकी यात्रा का योग बन रहा है।
1: अच्छा अच्छा,
2: इसके बाद कोई योग नहीं बनता जन्मा।
1: ठीक है पंडित जी, हम वक्त से पहले ही निकल जाएंगे यात्रा के लिए।
2: आयुष्मान भगवान भला करे।
1: अरे पंडित जी, मैं तो भूल ही गया था, ये लीजिए आपकी दक्षिणा। क्षमा कीजिएगा, जल्दी में था ना इसलिए भूला जा रहा है।
2: जजवान ससुराल को जा रहे हो, भूलोगे जो नहीं, ससुराल से लौट के दे देते।
1: अरे नहीं पंडित जी, ये तो इस वक्त शुभ मुहूर्त निकालने के लिए मात्र पत्र पुष्प अर्पित किए हैं। ससुराल से लौटने पर तो मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ आपके दर्शन को आऊंगा और गांठ जोड़ के आपके चरण छूऊंगा।
2: अच्छा मैं चल रहा हूँ, भगवान आपकी यात्रा शुभ कुशल पूर्वक हो रहे।
1: पंडित जी ने तो भाई कमाल ही कर दिया, एकदम कमाल।
3: अरे क्या कमाल कर दिया पंडित जी ने?
1: तुम जितना आसान समझती हो मुहूर्त उतनी आसानी से नहीं निकलता है। जैसे बगुला पानी में खड़ा खड़ा मछली को दबोच लेता है ना, ठीक उसी तरह हमारे पंडित जी भी पत्रा में आंख पहले तो गड़ाए रहे और फिर मुहूर्त मिलते उसे दबोच दिया। अरे आज मैं पंडित जी को मान गया।
3: अरे बस हो भी क्या, अरे बखानी किए जाओगे या ये भी बताओगे मुहूर्त कब का किस दिन का निकला?
1: अब तैयारी करो तुम जल्दी से, ज्यादा देर नहीं है, केवल 3 दिन का मामला है।
4: अरे बहुया का प्यारे आए गवा।
1: हाँ अम्मा मैं आ गया। अरे अम्मा, पंडित जी ने शुभ मुहूर्त जैसे निकाला ना, मैंने दक्षिणा उनके मुंह पर ठोकी और सीधे घर आ गया।
3: अरे तो साफ साफ बतावत का ही नहीं है भैया कि पंडित जी ने किस समय की मुहूर्त की बात की है। अरे बच्चन की तरह पवारा का ही गाय रही।
1: अरे अम्मा, मैंने मालती से पहले बता दिया कि अब ज्यादा समय नहीं, केवल 3 दिन बाकी है। पंडित जी बोले त्रयोदशी अर्थात मंगलवार को सवेरे 4:21 से पूरी हमारी ससुराल यात्रा आरंभ हो जानी चाहिए। विलम्ब करने से फिर ससुराल यात्रा का जल्दी कोई जोग नहीं बनता।
3: तो इतनी सी बात बतावे के लिए इतना नाटक बतावे की कौन सी जरूरत रहे भैया? अरे बहू ये कोई समय ज्यादा नहीं है, तू इसके भरोसे ना रहना, सारी तैयारी पूरी कर, समझ गई? अरे इसका क्या ठीक, पहन बखत पे पता चलेगा कि कपड़ा लगता ही ठीक नहीं किया।
1: अरे मालती कान खोल कर सुन लो, मेरी पहली पहली ससुराल की यात्रा का मामला है, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ए, ससुराल वाले भी समझ जाएंगे कि कोई दामाद राजा आए हैं।
3: क्या वे लोग आप कुछ समझी नहीं है क्या?

0: अरे जब समझे थे तब के प्यारे लाल और आज के प्यारे लाल में बड़ा फर्क हो गया है।
1: अच्छा?
0: अब श्री प्यारे लाल को समझने के लिए भेजे की जरूरत समझी। अब कोई आसान नहीं मुझे समझना।
2: अरे बहू तुम भी बेकार ही इसके मुंह लगी हो, जाओ अपना काम करो।
1: माँ जी इनको समझा दीजिए, अगर इसी तरह वहाँ जाकर भी बड़बड़ाया करेंगे तो लोग क्या कहेंगे।
0: अरे कहेंगे क्या है? प्यारे लाल की बातों को प्यारे लाल को अब समझना कोई आसान काम नहीं रह गया। तुम लोग क्या जानो प्यारे लाल और उनकी बातों को। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पकड़ा
1: है। अच्छा जी ठीक है, मैं तो भैंस हूँ ना, दो तीन दिन बाद आपको भी खुद अपनी स्थिति का पता चल ही जाएगा।
0: हाँ हाँ, तुमको भी बड़ा गुमान है ना अपने मैके वालों पर। मैं भी अब देखता हूँ उनको वहाँ जाके।
1: जाइए जाइए जी भर कर देख लीजिए, अरे कहीं महंगी ना पड़ जाए आपकी पहली ससुराल यात्रा।

0: बस में फंस गई बाम घर तुम खींचे न काड़ो घर चलो।
1: अरे भैया ए सुनो, गोपालपुर गांव अभी कितनी दूर है?
2: गोपालपुर गांव
1: जी?
2: अरे भैया गोपालपुर नाम का गांव इधर तो कोई है नहीं।
1: भाई साहब यही कहीं गोपालपुर गांव है? अरे वही तो मेरी ससुराल है, असल में रास्ता भूल गया था इसलिए आपसे पूछा।
2: स्टेशन के कौन तरफ है वो गांव?
1: स्टेशन से इधर ही बिल्कुल पूरब की तरफ।
2: राम राम राम। अरे भैया तब तो आप बिल्कुल ही गलत आए गए। अरे आप तो स्टेशन से पश्चिम काफी दूर चले आए।
1: पश्चिम?
2: अब ऐसा करो पुनः स्टेशन लौट जाओ और स्टेशन से पूरब की तरफ 3-4 मील दूर कोई गोपालपुर नाम का गांव है,
1: अरे
2: वही किसी से पूछ लीजिएगा।
1: अरे सुन सुन सुन, तो ये स्टेशन से पूरब नहीं है क्या?
2: भैया तब तो लगता है कि आपको दिशा भ्रम हो गया।
1: राम, तब तो भाई बड़ी गलती हो गई।
2: अरे कोई बात नहीं, गलती तो हो ही जाती है।
1: भाई साहब सुनिए सुनिए, एक बात बताइए, क्या आप स्टेशन मेरे साथ वापस लौट चल सकते हैं?
2: वाह भाई वाह, लौटू क्या? मुझे तो दिशा भ्रम हुआ है, आप कैसी बातें करते हैं भाई साहब?
1: अरे भैया यही बात तो मेरी बीवी मांगती भी करती है, आप कैसी बातें करते हैं? सुनिए, क्या आप मेरी ससुराल के रहने वाले?
2: अरे जाइए जाइए, अपना रास्ता लीजिए। आप क्या कहते हो, आपकी बीवी क्या कहती, मुझे क्या लेना देना है? न मैं आपकी ससुराल का हूँ और न मैं आपको जानता हूँ। अरे रास्ता भूल गए हो तो बतला दे रहा हूँ, वरना अपना रास्ता लीजिए आप। रात हो जाएगी तो अच्छी तरह ससुराल पहुँच जाइएगा।
1: हाँ सही कह रहे हैं भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है आज तो तुम बुरे फंस गए प्यारे लाल। चलो बेटा वापस स्टेशन। तो क्या वाकई मुझे दिशा भ्रम हो गया? मैं तो पंडित जी से मुहूर्त पूछ के चला था, ये ससुराल की यात्रा भी जीवन भर याद रहेगी। ना कोई सवारी ना कोई सुविधा, बस पैदल परेड। हे भगवान। मैं स्टेशन के पूरब तो आ गया, नहीं आगे नहीं जाऊंगा, यही किसी से पूछ लेता हूँ, कहीं बेकार में फिर से परेड करनी पड़ जाए। सुनिए भाई साहब सुनिए।
2: हाँ कहो।
1: मैं पूछ रहा था कि मैं स्टेशन से पूरब की तरफ जा रहा हूँ ना?
2: बिल्कुल ठीक, पूरब की तरफ जा रहे हो, जाना कहाँ है?
1: जी मुझको गोपालपुर जाना है। वो सामने वाला गाँव क्या गोपालपुर ही है?
2: बिल्कुल ठीक पहुँचे, वही गोपालपुर है। सकल से लागत तो पहले पहला है।
1: जी हाँ जी हाँ, इस गांव में मेरी ससुराल है।
2: अच्छा अच्छा, गोपालपुर में तुम भी ससुराल है?
1: जी
2: है? हम भी सकल का देख रहे हो, शाम हो गई है, रास्ता तुमको मालूम नहीं, कहूँ रास्ता भूल गए तो जल्दी जाओ।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा मेला बहता जा रहा है, उस नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अरे भूख रहे कहीं काट न ले, दीनदयाल वृक्ष मारी हरे नाथ संकट भारी।
2: आगे बढ़े तो एक एक को देख लूंगा।
1: साथ में महावीर ने सब नाम सुनाओ।

0: ni guys. Mat,
1: अरे बड़ा
0: आप तो हमको पहचान गए।

0: अरे जीजा जी
1: अरे बड़ा गजब हो गया,
0: अरे बड़ा अनप हो गया,
1: अरे जीजा जीजा
2: आप तो हमको पहचान गए, इसी सुर कुत्ता नहीं पहचान पाए, इतने कुकुर पाले रहो, देखो काट लीज खून निकल रहा है रे।
3: प्यारे लाल तुमने इतनी देर लगा दी, आना ही था तो पहले खबर कर दिए होते।
2: अरे बाबूजी
3: बैलगाड़ी लेकर स्टेशन आ जाता। प्यारे लाल ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, देखे भैया कहाँ काट लिया।
2: देखो बाबूजी पाओ माँ
3: चोरे तीरा
2: चोरे चोरा
3: कुत्ता पालने का बड़ा शौक लगा था ना तुझे, अब हुआ ना नहीं अर्थ, जवाई बाबू को ही काट लिया। अरे जा मर, क्या देख रहा है, पानी लाकर घाव धो और तुरंत ही जाकर वैद्य जी को बुला ला।
1: अरे अब वैद्य जी आगे क्या करेंगे बाबूजी, अरे इसके लिए तो बस एक ही दवा है, सुई सुई, वो भी लगेगी अस्पताल में कल सवेरे।
2: मर गए सुई, अरे अम्मा अरे ससुराल आए के वैसे मानती तुम्हें अपने मायके का बड़ा गुमान था ना, मेरी मिन्नती मारी गई थी पंडित जी से चले बाद की पद यात्रा, उसके बाद पूरा की पद यात्रा, उसके बाद इससे कुकुर एक एक के पेट में बड़ी बड़ी 14 सुई। अरे अरे अरे मेरी ससुराल यात्रा।

तो ये थी हास्य नाटिका यात्रा प्यारे लाल की। इसे लिखा कल्पनाथ सिंह ने, निर्देशिका चंद्र प्रभा भटनागर। अभी आप आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति सुन रहे थे।

0: शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब दूँ जिसने मुझे इतने चरणों से इन चीजों को संवारने और सहकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
1: मेरे पास जाने की दौरान नौकरी, उस पर इंडिया में जाने नौकरी, और जिंदगी म्यूजिक के साथ शुरू हुआ, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जहाँ अनेक

फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी हरी हरन और अलका याग्निक की, गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे ए आर रहमान। गुलजार का ही लिखा एक और गाना ये सुनते हैं, ओमकारा फिल्म से।

रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजों में ओमकार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे विशाल भारद्वाज। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से, आइए लेते हैं बहुत छोटा सा ब्रेक।

0: जुबिन नौटियाल की आवाज में आप सुन रहे थे मुंबई सागा फिल्म का ये गीत। मनोज मुंतशिर और ने इस गीत को लिखा था और तनिष्क बागची ने इस गीत को संगीत से संवारा था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

0: शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चयन से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
1: मेरे पास जाने कितनी उड़ान नौकरी, उस परिंदे में जाने की, और जिंदगी म्यूजिक के साथ शुरू हुआ, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मीका सिंह और साथियों के आवाजों में आप सुन रहे थे तमाशा फिल्म का गीत। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था और ए आर रहमान ने इस गीत की धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया।

0: चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का नियमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष

0: पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन्द्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

0: श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

के लिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राम और श्याम फिल्म का गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की थी। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी। ये रास्ते हैं प्यार के, यह फिल्म का नाम जिसका गीत

रास्ते हैं प्यार के इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे। बोल राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे और संगीत से सजाया था इस गीत को रवि ने। यह बेगी रात फिल्म का गीत मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाज है।

दूरदर्शन में। आपके लिए कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं शिकारी फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर की है। फारूक कैसर ने इस गीत को लिखा है और जी एस कोहली ने

एक ही रात फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। वो लिखे थे मजनू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी

शिकारी फिल्म का गीत लता मंगेशकर उषा मंगेशकर के आवाज में आप सुन रहे थे। फारूक कैसर के बोल थे और जी एस कोहली की धुन थी। आपके लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। मोहम्मद रफी की आवाज में साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ ये गीत लीजिए सुनिए।

समुद्र फी की आवाज में आप वासना फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे चित्रगुप्त। आपके लिए कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं बड़ा आदमी फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की, रचना प्रेम धवन की है और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: जरा संभाले दाएं हाथ की।
1: लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में बड़ा आदमी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। रचना प्रेम धवन की थी, संगीतकार थे चित्रगुप्त। मोहम्मद रफी की आवाज में, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में लीजिए सुनिए सच बिहारी का लिखा गीत। संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी।

के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया गीत। इसी गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनो कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चे के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत ये दिन में भर

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। और देखिए ना, चारों तरफ फूल खिले हैं और मत भरी रुच
1: जवान है,
0: इन मीठी स्वर लहरियों की तरंगों पर सवार होकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े हैं।

कार्यक्रम में आज बातें बहुत ही मीठे गायक, विरल और दुर्लभ संगीतकार और अद्भुत व्यक्तित्व पंकज मलिक की।

पंकज मलिक का जन्म 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम था मणिमोहन मलिक और माता का नाम मनमोहिनी था। उनके पिता पारंपरिक बंगाली संगीत में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क दीनेंद्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रविंद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेंद्रनाथ टैगोर से रविंद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने इस फिल्म

संगीत समीक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन 1939 पंकज मलिक ने फिल्म दुश्मन में संगीत दिया, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत

सबसे अद्भुत गीतों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।

सन 1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत। इस फिल्म के गाने पंडित आरजू ने लिखे थे। खास तौर पर इस गाने को अक्सर ही विविध भारती पर सवेरे सवेरे सुना जाता है।

सन 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इस फिल्म के गीतकार थे केदार शर्मा। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया था।

आज इतने बरस बाद भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्ञी की लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रहीं और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी आवाज।

फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था। हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी कुंदनलाल सहगल की आवाज और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

सन 1941, फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का

0: इसी फिल्म में एक और गाना है जो आपको नॉस्टैल्जिया में उतार देगा, आप पुराने जमाने की मीठी यादों में खो जाएंगे।
1: ये

पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया, हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगेगी।

सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिकाई, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान।

पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था

पंकज मलिक लंबे समय तक आकाशवाणी कोलकाता से जुड़े रहे और पूजा के दिनों में महिषासुर मर्दिनी नामक कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक झलक सुनिए।

डाक विभाग ने सन 2006 में पंकज मलिक की जन्मशती पर एक विशेष डाक टिकट उनकी याद में निकाला था। 19 फरवरी 1978 को पंकज मलिक ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया तो बस उनका दिव्य स्वर, उनके बनाए गाने और उनकी मधुर स्मृतियां। गायक और संगीतकार पंकज मलिक को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज जाने माने गायक और संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित था। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह।
1: गली गली आवाज जावे, हर घर अपनी गिनती करावे, मिलके लिखांगे कल दा नवा अध्याय, साडी जनगणना साडा विकास।
2: जनगणना दे पहले पड़ाव विच हाउस लिस्टिंग अते हाउसिंग सेंसस यानी तुहाडे घर

तुम्हारी आंखों में सपनों के बीज रोपे थे, उनमें खिलने थे फूल, पर हर बीज कहां अंकुरित हो पाता है। वक्त की तेज धूप ने सूख ली नमी सपनों की, अब हवाएं भी चुभती हैं और आंखों में टूटे ख्वाबों की किरचियां जलन पैदा करती हैं। वक्त का पहिया किन किन दिशाओं में घूम जाता है समझ नहीं आता।

हस्तियों का कोई मुल्क नहीं होता, वो हवाओं में उड़ती है किसी फाही की तरह, जैसे किसी शाख पर थोड़ी देर बैठ जाए कोई पंछी। ऐसे किसी किसी जिंदगी में उदासी का पंछी आकर बैठ जाता है और फिर उड़ने का नाम नहीं लेता। उदासियां पसर जाती हैं तो फिर हटती नहीं है। सुरमई उदास शामों में गूंजती है खामोशियां।

दुनिया के किनारे पर बैठ जाओ और देखो दुनिया की हलचल। ये चहकती दुनिया, ये बदहवास दुनिया, ये थकी हुई दुनिया। दुनिया के किनारे पर बैठ जाओ और देखो कितनी तरह की है ये दुनिया। इस दुनिया में है धक्के मारते लोग, कंधे छीलते लोग, धोखा करते लोग। ये दुनिया उदासियों की महफिल है।

समंदर, एक अनंत विस्तार है समंदर, जाने कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। समंदर का किनारा लगता होगा रूमानी कुछ लोगों को, समंदर उदास करता है हमें, उदासी की लहरें आती हैं एक के बाद एक और बस सराबोर कर जाती हैं। सुरमई शाम, उदास समंदर, थका हुआ सूरज, बोझिल हवा और गूंजता हुआ ये नगमा।

आंखें बोलती हैं सब कुछ। कहते हैं कि अल्फाज अपनी बात कहने का सबसे कमजोर तरीका है। सबसे अच्छी बातें वो हैं जो खामोशी में कही जाती हैं। बातें करती हैं हमसे तुम्हारी आंखें। तुम्हारी आंखों के दियों से रोशन है हमारा संसार और इन आंखों के गीत हमारी दुनिया में मिठास खोलते हैं।

एक सुबह आती है, दोपहर को अपना ताप सौंपती है और दोपहर अपनी थकान शाम की मुट्ठी में रख देती है। रातें बस हमारी अपनी होती हैं, रातों को सजती है यादों की महफिल, यादें जिनमें दर्द भी है तकलीफें भी, यादें जिनमें आहें हैं, यादें जिनमें आंसुओं की नमी है।

और फिल्म वली आजम। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਂਸਸ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜੇ, ਹਰ ਘਰ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸੈਂਸਸ 2027 ਸਾਡੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
1: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
2: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
3: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: जग घूमे आधार जैसा ना कोई।
2: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172,
2: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को

0: पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। इस वेले रात के 11:05 होए ने। हुण साडे केंद्र तो अज दा प्रसारण समाप्त हुंदा है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडी सेवा च फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई सानू इजाजत दिओ। जय हिंद।